एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि तदनुसार 12 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 43 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

0: चिंतन, आलेख चंद्रहास दलाल का।
1: दीनता। दीनता का भाव मन में तभी आता है जब मन निष्पकट हो जाए, अर्थात दूसरों के प्रति न दुष्ट भाव और न अपने प्रति स्वार्थ भाव। स्वार्थ भाव की अंध ममता मनुष्य में अहंकार जगा देती है और उससे अनेक विकार जन्म लेते हैं। अहंकार का ही एक व्यक्त रूप दंभ है। जहाँ मनुष्य में दंभ आया, वहीं मनुष्य मदांध हो जाता है। फिर कितने तरह की मदांधता, विद्या का मद, धन का मद, कुल का मद, यौवन का, पुरुषार्थ, बल का मद, वाचाल होने का मद, तो वाचाल न होने का भी मद, व्यवहार कुशलता का, कुटुंब पोषण का, दान का, शत्रुओं को पराजित करने का, बलिष्ठ या विद्वान होने का, संतान का मद, समाज में मान का, सुखी होने का, कभी समाज सेवा का, यह इतना व्याप्य है कि जीवन के हर मोड़ पर उसकी छाया दिखती है। फल यह होता है कि हमारे जीवन का हर पहलू दुष्ट हो जाता है और हम अपराध लिप्त हो जाते हैं। चित्ते न दुष्टो वचसापि दुष्ट, काये न दुष्ट क्रियाया च दुष्ट, ज्ञाने न दुष्ट भजने न दुष्ट, ममापराध कतिदा विदार्थ। यह सब न रहे तभी दीनता का उदय होता है। जीवन के साथ अहम इतना घुला मिला होता है कि दीनता संभव ही नहीं हो सकती। जीवन जितना सरल और सहज होगा, हम दीनता के उतने ही करीब होंगे। इसके लिए मात्र एक ही अभ्यास की आवश्यकता होती है, कर्तापन का एहसास ही न होने देना। किसी वस्तु के पास रहने और रखने का एहसास ही अहम है। यदि इससे बचना है तो इसकी पहली पायदान है मैं और मैंपन, अर्थात यह मैंने किया, यह मेरा दिया है, इस भाव का पूर्ण त्याग और यह स्वीकारना कि मैं नहीं, मेरे प्रत्येक कार्य में वही है जो करता करवाता है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ऐसा अभ्यास हो जाने पर धीरे धीरे दीनता परिपक्व हो जाती है, दया द्रवीभूत होकर अंदर ऐसा सौहार्द पैदा करती है कि हमारा नज़रिया ही बदल जाता है। गांधी जी का दूसरा गाल सामने कर देना इसी का ही तो संकेत है। दीनता को द्रवित होने के लिए कोई पात्र तो चाहिए, चाहे वह अपंग हो और उसे सहारे की ज़रूरत हो, इलाज, स्कूल की फीस, चाहे छोटा या बड़ा, फिर शत्रु ही क्यों न हो, सबके लिए एक समान। दया वह विचार है जो कुछ करने के लिए प्रेरणा देती है। दया एक मानसिक अवस्था है। मन में दया उपजी नहीं कि पात्र के दिखते ही वह झंकृत हो जाती है। मन में एक मनोरथ जाग जाता है। याचक द्वारा याचना के बिना कहे भी उसके प्रति वह झंकृत हो उठती है। विधवा का कोई सहारा नहीं, उसकी मदद के लिए लोग आगे आते हैं। दया जाति पाति के भेदभाव से कोसों दूर है और न पास या दूर ही देखती है। गुजरात के आकस्मिक भूकंप में केवल भारत ही नहीं, विश्व का प्रत्येक कोना सहृदय हो जाता है। मानवता सुवासित हो जाती है। यह सुवास कृपा की है, दया का कृत्य रूप। दया तो केवल मन में आकर रह जाती है। आनंद इस कृत्य में है, विचार को परिणाम देना। अपहिज प्यासा है, बेचारे को पानी चाहिए, बहुत प्यासा है, यह सब दया है, कोरी दया। परंतु अपहिज को इस अवस्था में उस असहाय को पानी पिला देना दया का कृत्य रूप है। ऐसा कृत्य जो आनंद से अभिभूत कर देता है, यह हो गई कृपा। अब थोड़ा यह भी विचार कर लें कि यह सब कैसे होता है। इसके मूल आधार में ऊर्जा का स्रोत है संस्कार। जैसे कहते हैं, वकील का लड़का वकील ही तो करेगा, अतः इसका पोषण माता पिता से मिलता है। बाल्यावस्था में वह केवल विचारों को सुनता है, किए कार्यों को देखता भरे, संस्कार का बीजारोपण हो जाता है। इसे इस कथानक द्वारा समझ लें। इंग्लैंड के एक स्कूल में ठंडी ऋतु में जिस दिन लंबी छुट्टियां घोषित हुईं, सभी बालक खुशी खुशी उछलते कूदते छुट्टी की अपनी अपनी कल्पना में मस्ती से निकल दौड़े। इसमें एक विद्यार्थी की एक वृद्धा पर नज़र पड़ती है, जो सड़क पार करने के लिए असहाय मुद्रा में खड़ी सहायता की याचक दृष्टि लिए थी। बालक ने देखा और मन ही मन विचारा कि इसका भी कोई पुत्र होगा जो अभी उससे दूर है, क्यों न मैं इसकी मदद कर दूं। और उसने वृद्धा को सहारा देकर सड़क पार करा दी। असंख्य आशीर्वादों के अभिषेक से बालक अपने को धन्य अनुभव करने लगा। बात छोटी है पर बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे जीवन को बदल देती है। इसी दीनता की प्रतिमूर्ति हम मदर टेरेसा को देखते हैं। कृपा का यदि उसे पर्याय भी कहें

0: चित्रा सिंह के गाए इस भजन के साथ ही आज का आस्था के स्वर कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। न केवल मदर टेरेसा, उसके विचार और प्रत्यय ने उन संस्कारों का बीजारोपण कर दिया जिससे बालकों और कोढ़ियों के लिए सैकड़ों संस्थाओं का संचालन आज उनकी अनुपस्थिति में भी उसी श्रद्धा से हो रहा है। ऐसे कार्यों के लिए हम भी संकल्पित हों, इसी से समाज बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा।
1: ये था आज का चिंतन, आलेख और वाचक स्वर चंद्रहास दलाल का। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुति श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग।

पवित्र चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर था लता मंगेशकर और सुदेश वाड़कर का। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा। केले में कीट नियंत्रण, वाचक स्वर विठल नारायण पाटिल।
1: मैं विठल नारायण पाटिल, ग्राम दापोरा, तहसील जिला बुरहानपुर का कृषक हूँ। आज मैं आपको केले में कीट नियंत्रण विषय पर जानकारी दे रहा हूँ। प्रारंभ में जो हम केला कंद या टिश्यू कल्चर केला के पौधे लगाते हैं, तो वे जब में खेत में सेट हो जाते हैं, उसके बाद में प्रारंभिक अवस्था जो उनकी बढ़ने की होती है, उस समय छोटी छोटी इल्लियाँ उसके जो पोंगे होते हैं उसको कुतरना प्रारंभ करते हैं। तो उस समय हम एमिडा और क्लोरोपाइरिफास इनका प्रयोग करके हम उसको नियंत्रित करते हैं। दूसरी बात, केले के पौधे में जो सिगाटों का, जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ती है, उस समय ये करपा रोग निर्माण होता है। पत्ते झुलसने लगते हैं और किनारों से उसमें सूखने की शिकायत शुरू होती है। तो उसके लिए हम नीम तेल प्रतिपम 60 ml और साथ में फंगीसाइड में हम जैसे M45 एक बार ले लेंगे 25 ग्राम, और दूसरे स्प्रे के अंदर पुनः नीम तेल लेंगे 60-70 ml, और फंगीसाइड में हम फिर दूसरा बदला के बाविस्टीन वगैरह 20 ग्राम प्रतिपम के हिसाब से लेके इस सिगाटों का जो है इसको रोग को हम कंट्रोल करते हैं। दूसरा, चरका रोग। जब ठंड होती है, टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आना प्रारंभ होता है नवम्बर दिसंबर माह के अंदर, तो पत्तों में जो वेन होती है, वो वेन में पानी जमा होने से वो बर्फ बन जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाती है। तो उस समय हम खेत के अंदर अलाव करते हैं, कंडे जलाते थोड़ी थोड़ी दूर पे, या तो फिर मक्के का जो भूसा होता है उसको रख के फिर जलाते हैं, जिससे कि ये धुआं निकल के तापमान बढ़ जाएगा। जैसे 8 डिग्री है तो ऐसा मान के चलिए कि हमारा टेम्परेचर उससे बढ़ जाएगा, इससे भी हम फिर ये जो चरका रोग है इसके निजात पाते हैं। तीसरा है एक सीएमई वायरस यानी कुकुम्बर मोजेक वायरस रोग है। इससे केले के जो पौधे के पत्ते आते हैं ये छोटे छोटे निकलते हैं, पौधा बढ़वार बराबर करेगा किंतु फल देते समय काफ़ी छोटे केले देता है जो अनुपयोगी होते हैं। तो ये सीएमई के लिए उसको पौधे को उखाड़ के फेंकना उपयुक्त तो होता है। उसके लिए किसानों को हम बताना चाहेंगे कि जुलाई और अगस्त के 1.5 महीने के अंदर केला कंद या तो केला टिश्यू कल्चर पौधे को न लगाए, क्योंकि जो हम 1.5-2 फीट का जो हमारा केला होता है, ये उसी समय जुलाई अगस्त के बाद में सितंबर माह में ये प्रभावित होता है। इसलिए सीएमई के लिए बचाव के लिए हम जुलाई और अगस्त का 20 अगस्त तक जैसे पौधा लगाना बंद करें। तीसरा, काफ़ी मात्रा में हमारे इधर बुरहानपुर जिले में, जो हमारा एक जिला एक उत्पाद केला के लिए है, काफ़ी मात्रा में केला फसल लगाते हैं, तो यहाँ पर एक पनामा विल्ट नाम का रोग दिखाई देने लगा है। पनामा विल्ट यानी क्या है कि लुंगर आने के कुछ समय पहले, 1 माह पहले, उसके पत्ते पूरे पीले पड़ने लग जाते हैं, पत्ता पूरा फिर उसके बाद में सूख जाता है। तो उसके जो होस्ट होते हैं, उसके जो वायरस है, तो ये जमीन में नीचे कम से कम 30-35 साल तक जीवित रहते हैं। तो जैसे हम क्वारंटाइन करते हैं कोरोना के समय पेशेंट को, उस वैसे ही इन पौधों को भी हम ऐसे 2-2.5 फीट अंतर से 2-2.5 फीट की जो लकड़ियाँ लेते हैं उसके चारों तरफ लगा देते हैं, और उसको फिर पौधे को एक दराती से काट के दूसरी जगह पे गड्ढे में दबा देते हैं, और पौधे के जो अवशेष है उसको जला देते हैं। और जो हम दराती का प्रयोग करते हैं उसको कटाई के लिए, उस दराती को अच्छी तरह से साफ करके ही फिर दूसरे स्वस्थ पौधे के पील काटने में प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम जो केले की फसल में रोग आते हैं उसके नियंत्रण के लिए काम करेंगे। तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि हमारे केले के बगीचे में इस प्रकार से किसी भी प्रकार का रोग हमें दिखाई दे तो तुरंत उसको उपचार करने के लिए प्रयत्न करें, ताकि हमारे स्वस्थ पौधे अच्छे बगीचे में रहे और अच्छा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हमें मिले। आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे कीट केले में कीट नियंत्रण, वाचक स्वर था विट्ठल नारायण पाटिल का।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुति कार्यक्रम विवरण।

विशेष कार्यक्रम में सुबह 7 बजे सुनिए वार्ता अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। वार्ताकार होंगी मनीषा शिवणकर। विविधा के अंतर्गत 7:20 पर होगा दीपक पगारे मोहना का काव्य पाठ। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल आप सुनेंगे सुबह 7:30 से। 8:15 पर सुगम संगीत,

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत, ये गीत आप सुनेंगे सुबह 8:30 से। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे सुबह 9 बजे से और फिर 11 बजे से। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से सुबह 10 बजे। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 10:05 पर। फरमाइशी निमाड़ी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी सुबह 10:35 पर।

निमाड़ी लोकगीत आप सुन सकते हैं शाम 5:30 पर। युवावाणी कार्यक्रम में शाम 6 बजे क्रम होगा हमारे शहर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:30 पर। किसान वाणी कार्यक्रम में शाम 7:21 पर सुनिएगा भेंटवार्ता, निमाड़ी लोकगीत, मौसम और मंडी भाव। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8 बजे से सभा की समाप्ति तक। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

0: क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।
2: आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।

आज की ताजा खबर में लेते हैं समाचार पत्रों से सुर्खियां। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका और पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। मतदाता सूची में संबंधित दावे और आपत्तियां 15 मई से 25 मई तक निर्धारित मतदाता केंद्र पर प्राप्त की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में शांति और सुरक्षा के लिए किए गए कार्यों के लिए पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए मध्यप्रदेश के 101 अधिकारी कर्मचारियों को K.F. रुस्तम जी पुरस्कार वितरित किए, जिसमें CSP अभिनव बारंगे सहित प्रदेश के 101 अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मध्यप्रदेश शासन की मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 के तहत जलाशयों में मत्स्य पालन के लिए कुंज स्थापना संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। खंडवा जिले में मत्स्य महासंघ के जलाशय इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर का चयन किया गया है। इसके लिए इच्छुक निवेशक उद्यमी अपने आवेदन 20 मई 2026 तक क्षेत्रीय प्रबंधक मत्स्य महासंघ इंदिरा सागर नर्मदा नगर खंडवा में जाकर कर सकते हैं। अब एक नजर खेल समाचारों पर। खंडवा जिले के विकासखंड खालवा में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित बालक क्रीड़ा परिसर में शिक्षा सत्र 2026-27 में एडमिशन के लिए आवेदन 18 जून तक किए जाएंगे। एडमिशन की चयन प्रक्रिया के तहत नवीन प्रवेश हेतु बैटरी टेस्ट दिनांक 19 जून से 28 जून तक आयोजित होंगे। आवेदन पत्र जनजातीय बालक क्रीड़ा परिसर खालवा से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए आवेदक छात्र जनजातीय वर्ग का होना आवश्यक है। जिले के चीराखदान फीडर पर मंगलवार यानी आज मेंटेनेंस होगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक भंडारिया रोड सहित अन्य आसपास के क्षेत्रों की बिजली बंद रहेगी। अब एक नजर मौसम के हाल पर। कल का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। समाचारों का संकलन किया श्रुति सोनी ने।

0: आज की ताजा खबर।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। विशेष कार्यक्रम में आज सुनिए वार्ता, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। वार्ताकार है मनीषा शिवणकर।
1: नमस्कार श्रोताओं, में मनीषा शिवणकर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, जो आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती है। यह दिन स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों के तुल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए समर्पित है। इस दिन को पहली बार 1974 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में नर्सों की भूमिका को रेखांकित करना और उनके काम का सम्मान करना और मरीजों की देखभाल के प्रति उनके समर्पण के लिए आभार व्यक्त करना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें लेडी विद द लैम के रूप में जाना जाता है, उन्होंने क्रीमियन युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की सेवा की थी। नर्सें न केवल बीमारों की न देखभाल करती है, बल्कि स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ की हड्डी भी होती है, जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्स की संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था, जिनके जन्म पर उनका नाम रखा गया था। फ्लोरेंस का बचपन से ही दूसरों की सेवा में लीन होना स्पष्ट था। किशोरावस्था में ही वह अपने परिवार जागीर के पास स्थित गांव में बीमार और गरीब लोगों की मदद करने में समय बिताती थी। उनका मानना था कि नर्सिंग ही उनका पेशा है। 1844 में उन्होंने नर्स के रूप में काम करने का निर्णय लिया। 1850 में उन्होंने डेसलडब शहर के एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की। 1853 में उन्होंने लंदन में अपनी पहली नर्सिंग भूमिका संभाली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1854 में क्रीमिया युद्ध में घायल हुए ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल के लिए 38 नर्सों की एक समूह का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक जानी जाती है। सबसे अंधेरी रातों में अपने मरीजों को देखने के लिए नाइटिंगेल उनके बिस्तरों के बीच चलते समय एक दीपक लेकर चलती थी। उसके बाद उन्हें दीपक वाली महिला जाना जाने लगा। नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं, बल्कि सेवा का एक सर्वोच्च रूप है। जब कोई मरीज अस्पताल आता है तो वह शारीरिक दर्द के साथ साथ मानसिक रूप से टूट जाता है। ऐसे में एक नर्स अपनी निस्वार्थ देखभाल, सहानुभूति और धैर्य से न केवल उनका इलाज करती है, बल्कि उन्हें नई जिंदगी जीने की उम्मीद भी देती है। कोविड-19 महामारी के कठिन दौर के समय, जब अपनों ने भी दूरी बना ली थी, तभी हमारी नर्सों ने आगे आकर बिना अपनी परवाह किए मरीजों की सेवा की। नर्सिंग कार्य बल स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है नर्सें, और कोविड महामारी के वक्त अस्पताल में मरीजों की इतनी खराब अवस्था होने के बाद भी नर्सों ने उन्हें ठीक करने के लिए उनकी सेवा करने में अपना पूरा योगदान दिया। अस्पतालों में नर्सें ही मरीज के लिए सेवा भाव से एक माँ की तरह उन्हें संभाल लेती थी और हर वक्त उनके साथ रहती थी। चाहे वह किसी भी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो, वह उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। इसी प्रकार नर्सों ने मरीजों की बहुत सेवा की थी। मरीजों, उनके परिवारों और डॉक्टरों के बीच की मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करना और स्वास्थ्य सेवा टीम के साथ मिलकर काम करना ही नर्सों का काम था। पहले के समय की नर्सें के अपेक्षा आजकल के समय की नर्सों को बहुत ज़्यादा नर्सिंग सेवा, मेडिकल की ट्रेनिंग दी जाती है। उसी के कारण वह मरीजों की और अच्छे से देखभाल कर पाती है, और घर पर जाकर भी नर्सें मरीजों की देखभाल करती है और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। जिन मरीजों को अस्पताल में नहीं लाया जा सकता, उनके लिए नर्सें घर पर ही बुलाई जाती है, और वह मरीजों की देखभाल कर और उनकी सेवा भी कर सके, इस प्रकार की नर्सों को घर पर बुलाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 1926 के लिए ICN ने यह थीम घोषित की है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है। यह थीम स्पष्ट संदेश देती है कि नर्सिंग कार्य बल के जीवन रक्षक प्रभाव को अधिकतम

0: करने के लिए हमें नर्सों को सुरक्षित, निष्पक्ष कार्य वातावरण और पूर्ण नर्सिंग अभ्यास प्रभाव और नेतृत्व के सशक्त बनाना होगा। नर्सिंग एक महत्वपूर्ण सेवा पेशा है। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी मरीज की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक देखभाल करना, डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार उपचार करना, दवा इंजेक्शन देना, महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करना और रिकॉर्ड बनाए रखना। नर्सें मरीजों को शिक्षित करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और स्वास्थ्य सेवा टीम के साथ समन्वय बनाकर सुरक्षित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होती है। नर्सों की जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा होती है। मरीजों के लक्षणों का आंकलन करना, शारीरिक जांच करना और महत्वपूर्ण संकेतों, तापमान, रक्तचाप, नाड़ी की निगरानी करना, डॉक्टरों के आदेश अनुसार दवाई इंजेक्शन और उनका ब्लड वगैरह देखना, साथ ही ड्रेसिंग और घाव की देखभाल करना, दस्तावेजीकरण, मरीजों के मेडिकल इतिहास, उपचार और स्वास्थ्य में स्थिति में बदलाव का सटीक रिकॉर्ड रखना, मरीजों के अधिकारों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें सर्वोत्तम संभव देखभाल मिल सके। इसी प्रकार नर्सें मरीजों की बहुत ज़्यादा देखभाल करती है। जहाँ कहीं भी बीमारी अपने सबसे खतरनाक रूप में फैली हो और विनाशक का हाथ भयावह रूप से निकट हो, वहाँ यह अतुल्य महिला नर्स दिखाई देती है। उनकी सौम्य उपस्थिति मृत्यु के संघर्ष के बीच भी सुकून का स्रोत होती है। आज के दिन हमें न केवल नर्सों की सराहना करनी चाहिए बल्कि उन्हें बेहतर कार्य वातावरण, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प भी लेना चाहिए। अंत में सभी नर्सों को अथक प्रयासों और मानवता के प्रति समर्पण के लिए सलाम करती हूँ। आप है तो स्वास्थ्य है।
1: विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। वार्ताकार थी मनीषा शिवणकर।
2: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
3: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
2: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
3: क्यों?
2: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
3: वो कैसे?
2: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
3: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
2: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
3: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
2: आप कब आ रहे हैं?
3: आकाशवाणी खंडवा पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। 7:10 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आज, जुटेंगे फ्रांस की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश में निवेश पर होगा मंथन। राज्य मंत्री परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। और प्रदेश में योग को घर घर तक पहुंचाने के लिए आज से शुरू हो रहा है हर घर योग अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। कल वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी नागरिकों से राष्ट्रहित में प्रधानमंत्री के सुझावों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक संकट और सप्लाई चेन की चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री के सुझावों को अपनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों से डीजल पंप के स्थान पर सोलर पंप के उपयोग और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाकर प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह भी किया। इससे पेट्रोलियम पदार्थ और उर्वरक के आयात में कमी आएगी। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 4 मंत्री भी शपथ लेंगे, जिनमें से 2 भाजपा और 1 सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के होंगे। ये असम में एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में इसका नेतृत्व करेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हेमंत बिस्व सरमा और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं।
2: गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और हेमंता जी के कुशल नेतृत्व में यह तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक नया कीर्तिमान, एक नया युग अगले 5 साल का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंता जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कल स्थापित होने जा रही है। दिल की गहराइयों से हेमंता जी और उनकी पूरी टीम, जो 5 लोगों का शपथ भी दिया जा रहा है, और उसी के साथ प्रदेश की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं।
0: भोपाल में आज इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें निवेश संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विदेशी निवेशकों से संवाद करेंगे। इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, फ्रांसीसी उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे।

0: कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक, तकनीकी और संस्थागत साझेदारी होगी। इससे राज्य सरकार फ्रांसीसी कंपनियों को मध्य प्रदेश के औद्योगिक वातावरण, निवेश संभावनाओं, नीति समर्थन और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक इकोसिस्टम से अवगत कराएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में आज से हर घर योग अभियान शुरू हो रहा है। अभियान में 800 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सभी चिकित्सालयों में पदस्थ योग शिक्षक 10-15 नागरिकों के छोटे समूह में योग अभ्यास करवाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल एक बयान में कहा कि प्रदेशवासियों को योग से जोड़ने के लिए 21 जून तक यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पंडित खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज भोपाल के मास्टर ट्रेनर स्टूडियो से 45 मिनट के लाइव योग सेशन आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से घर घर और जन जन तक योग को पहुंचाने के लिए मिलकर योग अभ्यास करने और निरोग रहने की अपील की है। राज्य मंत्री परिषद ने प्रदेश के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए 29,540 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के परीक्षण के लिए 15,598 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। शहरी और नगरी मार्गों के नवनिर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 6,900 करोड़ रुपए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों की पेंशन के लिए 6,116 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बुधनी में MBBS, नर्सिंग और पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना के लिए 763 करोड़ 40 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। नीमच जिले की खुमान सिंह शिवाजी जलाशय सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 163 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इंदौर जिले में फार्मर रजिस्ट्री सैचुरेशन अभियान को 20 मई तक पूरा करने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत फार्मर आईडी बनाए जाने का कार्य केंद्र शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। फार्मर आईडी के अंतर्गत प्रत्येक कृषक भूमि स्वामी को यूनिक आईडी प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। भोपाल में 15 मई से आयोजित होने जा रही भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर 18 हॉकी सीरीज के लिए भारतीय और ऑस्ट्रेलिया जूनियर टीमें कल भोपाल पहुंची। राजा भोज एयरपोर्ट पर दोनों देशों के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 20 मई 2026 तक भोपाल स्थित उद्धव दास मेहता सेंट्रल सेंटर में आयोजित की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव आज इंदौर के 10,537 अधिवक्ता मताधिकार का करेंगे प्रयोग। सतना जिले के नगर परिषद नागौद के वार्ड 13 में होने वाले उपचुनाव को लेकर आचार संहिता के पालन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। संस्कृति राज्य मंत्री और खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी आज खंडवा दौरे पर रहेंगे। वे जिले में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सिवनी जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और संबंधित प्रारंभिक सर्वे कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। आगरमालवा जिले की नलखेड़ा तहसील के ग्राम डोकरपुरा में कल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 35 बीघा बहुमूल्य शासकीय गोचर भूमि को मुक्त कराया गया। विदिशा जिले में उर्वरक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए 50% की जरूरत वाली पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब किसान ई पोर्टल के माध्यम से अपनी जरूरत का 100% खाद एक बार में उठा सकेंगे। मंडला पुलिस द्वारा जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नैनपुर में बस संचालकों की बैठक आयोजित की गई। राजगढ़ में आयोजित समय सीमा बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जल गंगा संवर्धन अभियान, ई ऑफिस, आधार निर्माण, EKYC, सार्थक अटेंडेंस और समय सीमा के प्रकरणों की स्थिति पर विभागवार चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रायसेन में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। और ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आगरमालवा जिले में 31 मई तक जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों में किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। विविधा कार्यक्रम में आज सुनिए दीपक पगारे मोहना का काव्य पाठ। इनसे सुनते हैं निमाड़ी और हिंदी में ये काव्य पाठ।
2: आकाशवाणी का सभी श्रोता नक, दीपक पगारे मोहना को नमस्कार। सबसे पहले हूँ आपको एक निमाड़ी गीत सुनी रोज। महारा एना गीत में जो लोग, जो बच्चा गांव छोड़ी न, अपनी बोली का, अपनी संस्कृति को भूली जाए, उनका लिए यो गीत छे, उनका समर्पित यो गीत छे। कि तू निमाड़ को छोरो, तू बोल्या कर निमाड़ी रे, घना लाड़ सी सी ची अपना दादा न या वाड़ी रे। तू निमाड़ को छोरो, तू बोल्या कर निमाड़ी रे, घना लाड़ सी सी ची अपना दादा न या वाड़ी रे। भणी लिखी न बनी गयो रे, तू अंग्रेजी को बाबू, शरम लग जी अपनी माड़ी का, पाए अव कसा दाबू। तू तो पोइचो चांद प, तू तो पोइचो चांद प, थारी बोली पड़ी पछाड़ी रे। तू निमाड़ को छोरो, तू बोल्या कर निमाड़ी रे, पल्लो बांध्यो तू न हैप्पी कट मरणे में मसी, गोधड़ा छोड़ ज 12 बजे वो खान पीण काटे मसी। हेल्लो हाय म, अरे हाय हेल्लो म, राम राम गई नकट्या नाक कटाड़ी रे। तू निमाड़ को छोरो, तू बोल्या कर निमाड़ी रे, मोटर गाड़ी बंगलो सब कहीं, शहर मथारा पास छे, माए बाप थारा गांव की खोली म कितरा उदास छे, उनका करया धरया प तू न खोब लगई अकाड़ी रे। तू निमाड़ को छोरो, तू बोल्या कर निमाड़ी रे, मिठी बोली अपनी निमाड़ी, जसो नर्मदा को पानी, सिंगा की वाणी की नाना तू न नी कदर जानी। जरा शर्म होय मन म थारा, जरा शर्म होय मन म थारा, लई चल एख अगाड़ी रे। तू निमाड़ को छोरो, तू बोल्या कर निमाड़ी रे, तू निमाड़ को छोरो, तू बोल्या कर निमाड़ी रे। दूसरे गीत में मैं एक हिंदी का गीत सभी श्रोताओं को सुना रहा हूँ। इस गीत में जो बचपन मैंने जिया है आज के 30-35 साल पहले, क्या वो आज का बच्चा जी रहा है? एक 2.5 साल का बच्चा स्कूल से आकर अपने दादा से कुछ प्रश्न करता है, उन प्रश्नों को मैंने इस गीत में शामिल किया है। आप ध्यान से सुनिएगा।

एक से 10 तक गिनती में, दो के पहाड़े में। एक से 10 तक गिनती में, दो के पहाड़े में। ओ दादा मेरा बचपन खो गया किताबों में। ओ दादा मेरा बचपन खो गया किताबों में। सुबह सुबह जल्दी तैयार होता हूँ, स्कूल नहीं जाना हर रोज रो

0: बचपन खो गया किताबों में, सुबह सुबह जल्दी तैयार होता हूँ, स्कूल नहीं जाना हर रोज रोता हूँ, मस्ती मत करना ये मैम कहती है, अनुशासन की बातें दिन रात सहता हूँ, और खेल खिलौने सारे खेलूँ मैं ख्वाबों में, ओ दादा मेरा बचपन खो गया किताबों में, 1 से 10 तक गिनती में और पहाड़ों में, ओ दादा मेरा बचपन खो गया किताबों में, मैं छोटा बच्चा और बस्ता है भारी, कंधे पर रखना मेरी लाचारी, पेंसिल टूट गई या कॉपी फट जाए और चिंटू से झगड़ा मेरी गलती है सारी, थप्पड़ भी पड़ जाती है झूठे जवाबों में, ओ दादा मेरा बचपन खो गया किताबों में, 1 से 10 तक गिनती में और पहाड़ों में, ओ दादा मेरा बचपन खो गया किताबों में, 6 घंटे स्कूल फिर कोचिंग जाना है, होमवर्क ढेरों करके ले जाना है, और इतने कम नंबर ये मम्मा कहती है, राघव जैसा तुझको अव्वल आना है, और मम्मी पापा उलझे हैं अंकों के हिसाबों में, ओ दादा मेरा बचपन खो गया किताबों में, 1 से 10 तक गिनती में और पहाड़ों में, ओ दादा मेरा बचपन खो गया किताबों में। आखिरी में बच्चे की क्या ख्वाहिश है, वो दादा से बोलता है कि मिट्टी में खेलूं मेरा भी करता मन, अभी से पढ़ाई में नहीं मिलता अपनापन, थोड़ी सी जिद्दी बस टॉफी खाने की और विनती इतनी, मेरा लौटा दो बचपन, मेरा लौटा दो बचपन, मेरा लौटा दो बचपन, मिट्टी के खिलौने और चिड़ियों के शोर शराबों में, दादा मेरा बचपन हो लाजवाबों में, हो लाजवाबों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
1: विविधा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे दीपक पगारे मोहना का काव्य पाठ।

एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल।

श्रोताओं, जिंदगी के पलों को नजरों से जिया और आंखों से सहारा था। आइए आज महबूब से बात करते हैं और स्वीकार करें आपके अपने दोस्त मनीष कुलकर्णी का नमस्कार।

0: तरंगों से जुड़ा है ये मोहब्बत का एहसास, उफ की दूर होने नहीं देता।
1: आप हमारी जान बन गए।
0: सुनते रहें निवाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

हमारे सीने पे इश्क का वार कर दिया। तुम्हारी नजरों ने क्या कमाल कर दिया, हमारे सीने पर इश्क का एक वार कर दिया। तुम्हारी एक एक झलक को हम तरसने लग गए। मेरे महबूब की बात ही जुदा है, वो खुदा ही नहीं, वो खुद ही नहीं जानता कि वो क्या है। तो सुनते हैं दोस्तों एक और ये महबूब से जुड़ा हुआ खूबसूरत नगमा।

मेरे महबूब, तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। हम बात कर रहे हैं महबूब की, और ये गीत था मेरे महबूब फिल्म से मोहम्मद रफ़ी का गाया, शकील बदायूनी का लिखा और नौशाद के संगीत से सजा हुआ। तुम्हारी नज़रों ने क्या कमाल कर दिया,

खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा। मोहब्बत की बात है और महबूब की बात है तो हम सुनते हैं एक और एक खूबसूरत नगमा। एक शायर ने लिखा है, मेरे महबूब की सूरत, मेरे महबूब की सूरत खुदा से मिलती है, मेरे महबूब की सूरत खुदा से मिलती है, मोहब्बत की मोहब्बत और इबादत की इबादत हो अगर ऐसी मोहब्बत। तो सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर, हेमलता और साथियों को फिल्म महबूब की मेहंदी में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गुल हो, मेहताब हो, आईना हो, खुर्शीद हो या मीर, अपना महबूब वही है जो अदा रखता हो। महबूब की बातों पे हम जाएंगे तो बहुत कुछ नजर आएगा। आइए सुनते हैं किशोर कुमार का गाया ये खूबसूरत नगमा।

मेरे महबूब कयामत होगी। कयामत तो होगी ही, लेकिन महबूब की बातों को वो नज़रअंदाज नहीं करते हैं और महबूब की आंखों में देखकर चाहत का इजहार करने से दिल डरता है। महबूब की आंखों में देखकर चाहत का इजहार करने से दिल डरता है, धड़कनों पर अब चलता नहीं काबू, ये दिल उनसे

श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये अंतिम लाइन की, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे कार्यक्रमों के साथ। तो अपने दोस्त मनीष कुलकर्णी को अब आज्ञा दे कार्यक्रम सुनहरे पल संपन्न करने की। नमस्कार।

0: आकाशवाणी खंडवा से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल। सुबह के ठीक 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुर प्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और

0: वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नेउक शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों की एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
4: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक

0: लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
3: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
4: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ। और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और साइल

0: हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 101.2 MHz पर हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रोग्राम्स का खजाना। तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
5: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुगम संगीत में आज सुनिए रूप कुमार राठौड़ और सुनहरी राठौड़ की गाई चंद गजलें। आगाज करते हैं इस खूबसूरत गजल से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में

0: विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण।
3: हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: तो फिर सुनते रहें निमाड़ की सुरीली धड़कन।
3: मेरी आश की अब तुम ही हो।
4: लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की ये अगली गजल, रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर के स्वर में।

0: सुगम संगीत में अभी आप सुन रही थी रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की गाई चंद गजलें।
1: आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। पेश है कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
2: आपके मीत ये गीत।

अभी आपने सुना साजिद वाजिद के संगीत से सजा फिल्म रावड़ी राठौर का ये गीत, आवाज वाजिद और श्रेया घोषाल की, गीत फेज अनवर का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, अशरा शिंदे, ऋषि और कृष्णा घोड़के, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार, फाजिलका पंजाब भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी, शालिनी, तिवांशी, वाणी और आरबी खेड़ा, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोडाने, अभिषेक गोठाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शेंडे, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नोशा सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू, पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफी मंसूरी, पुरानी बिलाई तीन पदम नगर चारोदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम अहमदुद्दीन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज सिद्दीकी।

0: की और पूरा परिवार। इंदौर से देविका चौधरी, स्वाति चौधरी, प्रज्ञा चौधरी, मालती चौधरी, राम लक्ष्मण, भरत, शत्रु खड़से और वंदना मराठा। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार वोडानाम, सुदामा नगर खंडपा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग। इंदौर से अनिल कवचाले, सबिहा और सुषमा। मैसूर सीतामणि से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इरशाद, अकरम वसीम, अकरम रुबीना, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और ममता रानी शर्मा, पूनम शर्मा। कुवात बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर। आदर्श नगर मालवट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाहना शर्मा, मेंडी शर्मा। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, घीसू तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोड़ा गाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। मुंदी चक भगलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर साहा। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी और रियाज रिफकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और गाहिरा नूर। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह और उनके सभी साथी। जामिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, सोनम वली, आसमा वली। बक्सर से फातमा राज वली अंसारी। रेडियो अंतरा ये है दिल्ली से प्रमिला सिंह, हेमा अंतरा सिंह। डोंडी लोहारा से शंकर सिंह जटोरिया और प्रभा हगोड़िया। उमरखेड़ महाराष्ट्र से सिराज और शबाना खान। सिंधी बुजुर्ग से किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पुन्नू वड़तकर। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौल, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीर्तन राहुल और गुरशुद्ध सिंह राहुल। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी विकेट्टू। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी और फाल्गुनी जोशी।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं।

0: होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
5: जी,
4: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
5: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
4: पर ये होगा कैसे?
5: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
4: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
5: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
4: बस
5: बस
4: समझ गया।
5: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज, नुसरत बद्र का गीत और संगीत इस्माइल दरबार का, फिल्म का नाम देवदास। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, कंचन कुसुम और सरोज सोनार सिटी सेंटर अहमदाबाद से, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल, गुरवा पोस्ट किल्लो से नंदलाल राजपूत, राजू राजपूत, मुनक्का बाई, नंदनी बाई और रुद्र राजपूत, झरनिया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गोड़, नरेंद्र सिंह गोड़, सचिन, प्रीति, भावना, अंतिम, पलक, श्रुति, यशराज सिंह गोड़ और देवराज सिंह गोड़, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार सिंह, सनावत से दगड़ूजी सेन, धर्मेंद्र सेन, श्रीराम सेन, कलाबाई सेन, सावित्री सेन, निशा, आयुष, दीपांशु, आरुषि और लक्षिता सेन, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघु कुमार, भानुप्रिया कोहली, नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओम प्रकाश और साई गायकवाड़, डेर पाटन गुजरात से धीरज बी रबारी, कोटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोशी, परिधि और मायरा सुरोशी, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ मंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीयू स्वर्णकार, राधे कुमार और विद्यार्थी उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी, जमनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमदिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर जायसवाल, इंदौर मध्यप्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी और देविका चौधरी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, पद्मा टाकेश नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर्ष शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजन जी शाह, इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन और डब्लू अंसारी, अकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवर्णकर, प्रिंस एकांश, सुमित गवर्णकर, ध्वनि गवर्णकर, प्री प्रणीता, सिद्धार्थ और टुक टुक गवर्णकर, पोठिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शुशांक साहू, सीमा साहू, खमड़िया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, चंदननगर कॉलोनी से कौशल्या जोशी, प्रमिला जानी, सोनाली और सुरेश जाधव, चांदनी चौक गढ़ी पटरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की रानू और रविंद्र रौनक सेन, डोंडी लाहौरा बालो से हरिशंकर डोम, आरती और अनीता डोमिन, जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शमसुल हकरज अंसारी और फातिमा राज अजनबी।

श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। आवाज दी है मोहित चौहान ने, गीत प्रसून जोशी का, संगीत आर रहमान का और फिल्म का नाम दिल्ली 6। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवालकर, निर्मला नवालकर, विशाल नवालकर। मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। बाजार चौक ग्राम

से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े और वामिका गंगराड़े, कल्याण कनखंडवा से कोसर बी पवार, हसीना बी पवार, अलमाज बानो और सबीना जहीर पवार, ग्राम चामली कला से माणक चंद राठौर, पुष्पाबाई राठौर, ग्राम छेगांव देवी जिला खंडवा से अशोक वाघे, वंदना वाघे, काना वाघे, उच्च भट्टी विलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, अशी गोस्वामी, शिवन्या और अन्नु गोस्वामी, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तनिया नारंग, दादाजी धुनीवाले मार्ग खंडवा से मोहम्मद हसनैन हस्सू, बाबा मोइन छोटू, मोहम्मद फाजिल, जामा मस्जिद रोड बिकनगांव से साफिया अरहान खोकर, शिफा खोकर और अयान खोकर, सनावत जिला खरनकोन मध्यप्रदेश से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपी सिंह चौहान, दीपक, सचिन कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव, काव्यांशी, कृतिका और प्रभा कटारिया, मां नर्मदा श्रोता परिवार शिवकोटी ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा सेन, सपना सेन, ओम सेन और द्वारकीबाई सेन, इंदौर लिंबोदरी से गिरधारी लाल चौधरी, मनीषा बाई चौधरी, शनि मंदिर चौखंडवा से दुर्गा प्रसाद सेनी, अनीता सेनी, गौरव सेनी, ईशान सेनी और कार्तिक सेनी, लक्कड़ बाजार खंडवा से ठाकुर भवानी सिंह बे, श्रीया रोहन अंगद ठाकुर, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज, दिव्या भारती, गोराया जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म दिल्ली 6 से ये गीत।

0: इस गीत के लिए हमें कुछ पत्र मिले थे, कवल करुणी, बड़वासी, प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीरूराज शिमाली, सागर, रेडियो श्रोतागण, निम्बोरा महाराष्ट्र से बमन राव जोशी, हेमंत जोशी, मनीषा जोशी, अभिजीत जोशी, करिश्मा ताई, अशोक देशमुख और आलोक कुलकर्णी, बेमेत्रा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, मयंक रेडियो श्रोता संघ, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां और उनके सब साथी। तो इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मीत ये गीत समाप्त करने की आपके दोस्त मनीष कुलकर्णी को आज्ञा दे, नमस्कार।
1: आपके मीत ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के ठीक 9 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

अभी आप सुन रहे थे नाना पाटेकर, शान और साथियों की आवाजों में वनवास फिल्म का गाना। दोस्तों आज है 12 मई, आज ही मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे, अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस। दोस्तों पूरी चिकित्सा व्यवस्था में नर्सेस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनकी, ये तो हम सभी जानते हैं। आज जो हम ये देख रहे हैं नर्सिंग सेवा को एक सुव्यवस्थित रूप में, इसका श्रेय जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 12 मई सन 1820 ईस्वी को फ्लोरेंस नगर में हुआ था।

आपने विश्व युद्ध की विभीषिका के दौरान भी दिन रात घायलों की सेवा की और आपको लोग प्रेम और आदर के साथ द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। आपने नर्सिंग सेवा के प्रशिक्षण की नींव भी रखी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल और सभी नर्सेस के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
1: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे मीका सिंह और साथियों की आवाजों में शुभ मंगल ज्यादा सावधान फिल्म का गाना। वक्त हो गया है इस कार्यक्रम में, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप चित्रलोक, एक ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए रांझना फिल्म का गाना सुखविंदर

आज ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। दोस्तों, प्लांट यानी पौधे ही हमारे पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला फूड चेन की आधारशिला हैं। इनके महत्व और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है प्लांट बायोसिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। तो चलिए, चितलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवा रहे हैं तेरा क्या होगा लवली, इस फिल्म का ये गाना।

0: व्याख्यान है।
1: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश एक डांस नंबर आ रहा आपके रेडियो सेट्स पर, अनमोल मलिक की आवाज, कुमार ने लिखा इसे, जयदेव कुमार ने संगीतबद्ध किया है, आवाज है अनमोल मलिक की, फिल्म का नाम बजाते रहो।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदान एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: चंद्रमा।
1: भारतीय सिनेमा आज जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर राज किया था अभिनेता महिपाल।

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन अभिनेता थे।

सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच वाडिया, सोहराब मोदी और वी शांताराम जैसे उस दौर के दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया था।

0: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
1: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई यने पकरी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली पनी हरी भोली

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

0: अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।
1: जरा

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

0: साथ रखना।
1: जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद, हमें याद रखना
0: वो तेरी दुनिया।
2: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जप कर जाती। मैंने कहा गोल

0: अरे ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है, सुबह के ठीक 10 बजने वाले हैं। जिले की चिट्ठी हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी है प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर शरद बाघेला। इन दिनों मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। आगर मालवा जिले में भी पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शादी विवाह का सीजन होने के कारण बाजारों में भीषण गर्मी के बावजूद चहल पहल दिखाई दे रही है। दिन के समय बाजारों सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, वहीं लोग अपने जरूरी बाजारों के कार्य सुबह शाम करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और आगर मालवा जिले के प्रभारी नागर सिंह चौहान ने गत दिनों सर्किट हाउस में आयोजित हुई विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याण से जुड़े सभी कार्यों को अधिकारी प्राथमिकता से पूरा करें। प्रदेश के नगरी विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री नागर सिंह चौहान ने आगर मालवा प्रवास के दौरान बड़ोद चौराहे से पाल रोड तक 98.34 लाख रुपए की लागत से बनने वाली डामरीकृत सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों के समग्र विकास के लिए सतत प्रयासरत है। अपने प्रवास के दौरान मंत्री द्वय ने जिले के सुसनेर में नगर परिषद के नवीन भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। आगर मालवा जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर प्रीति यादव द्वारा भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में रबी फसल विशेष रूप से गेहूं कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष यानी कि नरवाई जलवाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि भी निर्धारित की गई है। इसके तहत 2 एकड़ से कम भूमि पर अवशेष जलाने पर 2500 रूपए, 2 से 5 एकड़ भूमि पर 5000 रूपए और 5 एकड़ से ज्यादा भूमि पर 15000 रूपए प्रति घटना के दर से राशि वसूली जाएगी। जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत मकानों की गणना और स्वगणना कार्य को 100% पूर्ण करने वाले प्रगणकों का गत दिनों आगर मालवा SDM कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में SDM व तहसीलदार व जनगणना चार्ज अधिकारी ग्रामीण द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगणकों आशा पालीवाल, किरण नागले, सोना सोनगरा, कालूराम मेहर और प्रेम सिंह यादव को सम्मानित कर उनके कार्य की सराहना की। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में आगर मालवा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 42 केंद्रों पर की जा रही है, जहां 20,843 कृषकों से 13,617 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही कृषकों को निर्धारित समय अवधि में भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आगर मालवा में 69.42 हेक्टेयर क्षेत्र में नवीन 2 औद्योगिक क्षेत्रों में 394 औद्योगिक प्लॉट विकसित किए गए हैं, जिसमें 175 निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई है। औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होने पर जिले में लगभग 550 करोड़ रुपए के निवेश और 3,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार उपलब्ध होगा और बड़े शहरों की ओर पलायन में कमी आएगी और साथ ही परिवहन, होटल, खानपान, मरम्मत व अन्य सेवा क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आगर मालवा जिले में 24 करोड़ की लागत से बनने वाले हडाई डैम का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय

0: मधु गहलोत ने किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास की कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले दिनों कृषि विभाग द्वारा आयोजित की गई मिट्टी प्रशिक्षण कार्यशाला में विद्यार्थियों को मिट्टी के परीक्षण के बारे में विस्तार से समझाते हुए प्रयोग करके दिखाया गया कि किसान अपने कृषि योग्य भूमि की मिट्टी का परीक्षण स्वयं करके उसकी उर्वरकता क्षमता के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना अंतर्गत विभिन्न राज्यों की संस्कृति, परंपराओं, जीवन शैली और भौगोलिक विविधताओं को समझने के लिए राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले की चयनित छात्रा ख्वाहिश गवली ने नागालैंड का भ्रमण कर परंपराओं, जीवन शैली और भौगोलिक विविधताओं को समझा और मध्य प्रदेश की संस्कृति का भी परिचय कराया। आठवें पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत कुपोषण के कारण पहचान एवं रोकथाम विषय पर आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में आयोजित हुए जागरूकता व्याख्यान में वक्ताओं ने कुपोषण के प्रमुख कारणों, उसके लक्षणों की पहचान और उससे बचाव के प्रभावी उपायों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए संतुलित आहार, स्वच्छता और जन जागरूकता को कुपोषण से निपटने के प्रमुख उपाय बताए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे आगरमालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा का था और वाचन स्वर शरद बाघेला का।
2: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओं, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना

0: भावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
1: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ। क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
0: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है।
1: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
0: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है।
1: जी
0: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है।
1: जी
0: लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: क्या कहते हैं?
0: थर्मल लैग।
1: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
0: जी
1: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
0: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है। ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
1: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
1: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
0: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें। और हाँ, प्यास लगे या न लगे, थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
1: जी
0: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
0: जी
1: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
0: जी
1: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
0: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
1: जी, तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
0: अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
0: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा,
3: तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
4: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
3: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो।

0: रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन मोहन,
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा। भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, हाँ चलिए चलिए।
2: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है। तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
4: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
4: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी,
4: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
4: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
2: जी।
4: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
4: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी,
4: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
4: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
4: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबाल कर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
4: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा ककड़ी तरबूज खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
2: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?

0: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
1: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
2: जी।
1: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
2: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
1: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
0: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
2: जी।
0: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
2: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
1: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
0: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
0: ठंडक में खेले भरपूर।
1: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
6: नमस्कार
4: साथियों। भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
6: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
4: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
6: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
4: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
6: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
4: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
6: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
4: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
6: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से

0: एल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गने बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक अल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परम वीर

0: चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोक रंजनी, प्रस्तुति अंतिम बाला पटेल की।
5: हेलो
6: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
5: फिर से
6: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
7: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
5: सर इतने कहाँ से?
7: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख
8: क्या हुआ पापा?
5: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
6: अरे
5: काट दिया।
8: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
5: फ्रॉड?
8: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे।
9: RBI कहता है
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: लोक रंजनी।
1: लोक रंजनी कार्यक्रम में हमारा सभी भाई बहनों को स्वागत छे। आज का कार्यक्रम में आपका साथ छे आपकी बहन अंतिम बाला, तो स्वीकार करो मारी राम राम। भाई बहनों, गीत संगीत न मनोरंजन को हमारा दैनिक जीवन में एक अलग ही स्थान रहे। दिन भर की व्यस्तता में अगर हम कुछ समय अपनी पसंद को संगीत सुनाएं तो हम तनाव न थकान से दूर रह सकें। न हमारा जो भाई बहन हमारा निमाड़ का लोकगीत न भजन पसंद करज, उनका लेने लाया हम उनकी पसंद का लोकगीत। तो शुरुआत करें इना गीत से, जिका लेना हमका पत्र भेजियो रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता संजय वाणी, मनीष वाणी, इनका परिवार का सभी सदस्य, बड़ाबम चौक खंडवा से संजय मारकंडेय, ममता मारकंडेय, संहिता न संजीता मारकंडेय, इंद्रपुरी कॉलोनी खंडवा से वंदना राजवैद्य, शेजल अम्बन शिवांशी, तुलसी पगारे, नरितिका साध भी इना गीत का पसंद करी राज। ग्राम कपासथल से डोंगर सिंह सावनेर, भिकन गांव से संतोष सातले, चंदन सातले, सारिका, रोहित, शुभम, शैलेंद्र, कंचन भाई सातले, इनका परिवार का सभी सदस्य, ग्राम रतनपुर से भागीरथ नायक, जितेंद्र, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद्र, आदित्य, गुनगुन, इनका परिवार का सभी सदस्य इन गीत का सुनना पसंद करी राज। शास्त्री नगर खंडवा से रमेश पंचोली, बीनू देवी पंचोली, प्रकाश, उर्मिला, दीपक, दीपिका, नंदिनी, निखिल, नगोरांज पंचोली। साथ ही मोटका माफी से हमको पत्र भेजी राज, जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, भावना, मन न मानस पटेल, आप सब सुनना चाहिए राज। भाई नथु जी पटेल, उनका साथ ही नकु गायो यो गीत।

अब हम कार्यक्रम को अगलो गीत सुनान भविन नोट जे कारण हमको पत्र भेजियो रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा यादव मोहल्ला सनावत से दिलीप मालाकार योगेश मालाकार सुनीता मालाकार नमुस्कान लकड़ बाजार खंडवासी मोहम्मद रफीक पवार मोहम्मद साकिब पवार मोइन छोटू पवार न मोहम्मद हसनैन पवार बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े वनीता गंगराड़े छोटू रोशनी न अजय गंगराड़े लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर परमजीत आदिबा कौर बिहार कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर डब्लू उल्लाह फकीर परवीन आसमा फकीर बुलंदशहर से बद्रुवली अंसारी फर्जुवली वंदना नगर इंदौर से वंदना परी गणेश मराठा कार्तिक भाव मराठा स्वाति प्रयाग चौधरी ललिता खर्चे न नारायण भाव खर्चे आप सब सुनु चाहिरा भाई बहन हेमलता उपाध्याय उनकी सखी नको गायो यो निमाड़ी गीत।

अब हम कार्यक्रम को अगलो गीत सुनांग भाई नोट जिकल हमको पत्र भेजियो ग्राम अटूत खास बड़ा टंडा सी चिंताराम राठौड़ हिमांशु मुस्कान सुनीता राठौड़ कवर कॉलोनी बड़वासी प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली आदित्य अदिति शिवानी न मीनूराज श्रीमाली इंदौर लिम्बोदी से गिरधारी लाल चौधरी न मनीषा भाई चौधरी आप सबकी पसंद पर आओ सुनाएं भाई अशोक कुमार कनाडे न उनका साथी न को गायो योगीत।

अब हम कार्यक्रम को आखिरी गीत सुनना भाई बहन जे कारण हमको पत्र भेजियो घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया प्रियंका पंचोलिया गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र न सनमति पंचोलिया बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून असलम अंसारी अकरम अंसारी न अल्ताफ अंसारी शिवकोटी ओंकारेश्वर से हमको पत्र प्राप्त हुए लिखने वाला छे राकेश पप्पू सेन ओम सपना धर्मेंद्र मुकेश ईश्वर वैष्णवी निशा सेन डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी सोनम आदिबा न दानिश अंसारी सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी राज एस टी अंसारी मेहताब अंसारी आफताब न मेराज अंसारी न साथ सूरजकुंड से विजय यादव इशिता यादव अदिति आयुष सोमती विनीता मनोज गुप्ता गार्गी गुप्ता न प्रिया गुप्ता को पत्र भी हमको प्राप्त हुए आप सब सुनना चाहिए साधना उपाध्याय नून की सखी नको गायो योगीत।

इन आज गीत का पसंद करियो तो भाई बहन हो ग्राम अहमदपुर खैगांव से राजेश पटेल ईशिता पटेल नमन अंतिम विजया न शीतल न साथ ग्राम कलजा खेड़ी से सुरेश पटेल अजय पटेल विकास विजय न शिवानी पटेल न तो एक साथ भाई बहन आज को लोकरंजनी कार्यक्रम यहाँ पूरा होच इना कार्यक्रम में आप आपकी पसंद का निमाड़ी लोकगीत सुनी सकोच न हमका फरमाइश लिखी न पत्र भेजी सकोच पत्र भेजने का लेना हमारा पतो छे लोकरंजनी कार्यक्रम द्वारा कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी सिविल लाइन्स खंडवा न खंडवा को पिन कोड छे 450001 तो भाई बहनों आपका पत्र न को आपकी फरमाइश न को हमका इंतजार रहेगा एक साथ आज्ञा दियो आपकी बड़ी अंतिम बालक है राम राम।

0: लोक रंजनी।
1: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम लोक रंजनी, प्रस्तुति अंतिम बाला पटेल की थी। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के ठीक 11 बजे हैं। थोड़ी देर में विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

हरिओम शरण की गई इस भक्ति रचना के साथ हमने शुरुआत की आज के रंग तरंग कार्यक्रम की। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रचना की ओर।

0: मीराबाई का ये भजन आप सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज में। धुन बनाई थी जगजीत सिंह ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने के

सुधा मल्होत्रा की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल, तर्ज बनाई थी जगजीत सिंह ने। चलिए अब जगजीत सिंह की आवाज की ओर बढ़ते हैं। कलाम है जावेद अख्तर का।

तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। दिल भी तू जहां भी तू एल्बम से जगजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे जावेद अख्तर का कलाम।

0: मधुरानी की तर्ज पर जमीर काजमी का ये कलाम आप सुन रहे थे छाया गांगुली की आवाज में इश्क एल्बम से।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।

ये गजल। चलिए बढ़ा जाए अब शांतनु मोइत्रा के संगीत की ओर। प्रसून जोशी के बोल हैं, शुभा मुद्गल की आवाज, क्या कहता है मन के मंजीरे फिल्म का एल्बम से ये गाना, आइए सुनते हैं।

चांद मेरा सब कुछ तो अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तो वो है।

फैज अनवर ने इस गाने को लिखा था सोनू निगम की आवाज जान एल्बम से ये गाना आप सुन रहे थे। और अब हम बढ़ते हैं जावेद अली और आकांक्षा शर्मा की आवाजों की ओर।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: चलिए बढ़ते हैं अब रंग तरंग कार्यक्रम में अगली रचना की ओर। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र के बोल, मन्ना डे और साथियों का स्वर। जी हाँ, फिल्म का नाम तीसरी कसम।

0: उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधिर द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी

के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ।

0: टैक्सी चोर फिल्म का ये गाना था। इसी गाने के साथ शुरुआत हुई आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थीं। अनजान ने इस गाने को लिखा था, बप्पी लहरी का संगीत। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तनिया।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।

0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। साथियों, बॉलीवुड गानों में हवाओं, पवन और फिजाओं का जिक्र बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है, जो अक्सर रोमांस, उदासी या मौसम के मिजाज को दर्शाता है। तो आज हवाओं का जिक्र करने वाले कुछ प्यारे से गीतों को हमने शामिल किया है यादों की महफिल कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज की ओर।

विश्वनाथ फिल्म का बहुत ही मीठा ये गीत आप सुन रहे थे। एमजी हशमत ने इसे लिखा था और संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। चलिए अब हम भी हवा के साथ साथ आगे बढ़ते हैं।

सीता और गीता फिल्म से ये दो गाना आपने सुना। किशोर कुमार और आशा भोसले के जुगल स्वर थे, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत। साथियों, हवाओं का जिक्र करते गीत हर दौर में लिखे गए हैं। हर दौर के गीत की जो हवाओं का जिक्र करते गीत हैं उनकी अपनी ही कहानी है। अब ये गीत कौन सी कहानी कह रहा है, आइए सुने।

शंकर जय किशन के संगीत से सजा ये गाना रमेश शास्त्री ने लिखा था, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था बरसात। साथियों, ठंडी हवाएं और इंतजार, इनका रिश्ता भी बड़ा पुराना है। ठंडी हवाएं और इंतजार गीतों में जब ढलते हैं तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं।

0: नौजवान फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार सचिन देव बर्मन ने। हवा का जिक्र करते कुछ और सुरीले गानों के साथ हाजिर होते हैं अभी, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे

0: करता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राज

0: संगीतकार सचिन देव बर्मन ने हवा का जिक्र करते कुछ और सुरीले गानों के साथ हाजिर होते हैं अभी, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे

0: करता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

एस एन त्रिपाठी का संगीत, फिल्म का नाम था संगीत सम्राट तानसेन। अब बढ़ते हैं आशा भोसले की आवाज की ओर। रवि का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, फिल्म का नाम दो बदन।

तो आपने ये गाना सुना आशा भोसले की आवाज़ में, शकील बदायूनी की रचना, रवि किया संगीत और फिल्म थी दो बदन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज का ये कार्यक्रम सचा है हवाओं का जिक्र करते कुछ सुरीले गानों के साथ।

शांतनु मोइत्रा का संगीत आप सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे के बोल शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजें थीं और अब हम बढ़ेंगे लता मंगेशकर की आवाज की ओर। पहचाना ये गाना, बहुत सुना सुना सा है, जरा गौर से सुनिए।

0: लवीश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: तो चलिए अब उस गाने की ओर बढ़ते हैं जिसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है।

0: लिबास फिल्म से ये गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज है अगले गाने में, उस गाने को हम और आप सुनेंगे साथ साथ, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी

हाथी मेरे साथी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आखिरी गाने की बारी। तो भाई हवाओं का जिक्र करता ये गीत है और ये गीत ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता। हेमंत कुमार का संगीत, गुलजार की रचना, किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम दो दुनी चार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। जी हाँ, आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं सुरीला सफर के साथ।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सुरीला सफर कार्यक्रम में हम रोजाना एक टेक्स्ट, एक इबारत पोस्ट करते हैं और उसी में से कुछ शब्द चुनते हैं और उन्हीं शब्दों के आसपास घूमते हैं कुछ गाने जो हम आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो आज का टेक्स्ट आप तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी मैं वो टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ। तो आज का टेक्स्ट है, आज की इबारत है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिल के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर जमाना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि एक सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए नया आसमान खोज ही लेता है। तो भाई, ये तो था आज का टेक्स्ट और इसी में से कुछ शब्द हैं। और वैसे शब्द तो आपने ढूंढ ही लिए हैं और गानों के भी बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की पंक्तियां जीवन के अनवरत संघर्ष, प्रेम और आशा के बीच संतुलन को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती हैं। तारों की टिमटिमाहट में छिपी मोहब्बत और चांद की शीतलता से अंधेरे को सहलाने का रूपक दिल के गहरे जख्मों पर मरहम जैसा सुकून देता है। और आगे लिखा है, सबसे मार्मिक बात यह है कि दुनिया की हकीकत इंसान को देती है, लेकिन सूरज

कि हर सुबह ये यकीन दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, उम्मीद की किरण कभी नहीं बुझती। आज शब्दों के माध्यम से रचा गया एक ऐसा सुकून भरा मंजर है जो तारों की छाँव में जीने और सूरज की रोशनी में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। इन्होंने शब्द भी लिखकर भेजे हैं, शाम रात आसमान ख्वाब उम्मीद चांद टिमटिमाते तारे और सूरज। तो वैसे मैंने कहा ना कि शब्दों के बहुत करीब पहुँच चुके हैं आप लोग।

कुछ और कमेंट हैं जिनमें बहुत ही बेहतरीन हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। बड़े सुकून से लिखा है आपने ये कमेंट। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वक्त की बहती नदी में जब यादों के दीप जलते हैं तो तन्हाई की खामोशी भी एक सुरीली नज्म सी लगने लगती है। सर्द रातों में ओस की बूंदें जैसे जमीन के कानों में सुकून के किस्से सुनाती हैं और ढलता हुआ सूरज जाते जाते ये वादा कर जाता है कि हर ढलती शाम एक नई शुरुआत की दहलीज होती है। वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से लिखा है आपने। आगे लिखा है कि इंसान अक्सर मंजिलों के शोर में रास्तों की खूबसूरती भूल जाता है और दुनिया की बंदिशों में अपने अरमानों को कैद कर लेता है, मगर हकीकत तो यही है कि जिस दिल में हौसलों की चमक और प्यार की गर्माहट होती है वो मुश्किलों की पथरीली जमीन को चीर कर भी अपनी खुशियों का गुलशन खिला ही लेता है। बहुत खूब। सच में साथियों, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बात यही है कि दिल अगर सच्चा हो तो मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। तो भाई अपने दिल को थोड़ा सुकून दीजिए, यादों को मुस्कुरा के महसूस कीजिए और अगर कोई अपना दूर है तो चांद को देखकर उसे याद कर लीजिए, क्योंकि साथियों कुछ रिश्ते आवाज़ों से नहीं एहसासों से जिंदा रहते हैं। एक और कमेंट हमारे पास आया है कि सूरज और चंद्रमा केवल आकाशीय पिंड नहीं हैं, ये प्रकृति और मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। कहीं ये जीवन की ऊर्जा, भावनाओं, समय और सौंदर्य के प्रतीक हैं। सूर्य को आत्मा का भी प्रतीक माना गया है जो आत्मविश्वास और यश प्रदान करता है, वहीं चंद्रमा को मन की शीतलता और शांति का और प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो भाई जब मोहब्बत सच बात है कि मोहब्बत न होती, प्यार मोहब्बत न होती, प्रेम न होता तो कुछ भी न होता। चांद, तारे, फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, साथियों ये झरने, नदियाँ कुदरत की सौगातें हैं, हमारे भीतर जीने की उम्मीद जगाती हैं। ये सच में हमें मोहब्बत है इनसे, अगर ये न होते तो ये जहाँ ही न होता। चलिए अब बात चल रही है प्यार मोहब्बत की, तो मोहब्बत का जिक्र करता एक गाना सुनते हैं और देखते हैं कि किस किस की पसंद मिलती है हमसे। वैसे अभी तक इस गाने का जिक्र मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया आपके इस कमेंट्स में।

आशा जी के गाए इस गाने के साथ हमने शुरुआत की आज के इस कार्यक्रम की। फिल्म का नाम था ये रात फिर न आएगी। बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि ये कम सुना गाना है। जी हाँ, ये आपने कम सुना है लेकिन बेहतरीन गाना है। और एक साथी लिखते हैं कि शानदार गीत है, कम सुना है फिल्म ये रात फिर न आएगी। और आशा जी की गायकी का तो अंदाज ही अलग है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि चांद जब भी आसमान में आता है तो सुनहरे सपने साथ मिलाता है, रात में सपनों के आगोश में गहरी नींद लेते हैं, सुबह की लाली पहनकर जब सूरज निकलता है तो सब सपने वास्तव लगते हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपने शाम की बात का जिक्र किया है। सच में शाम एक ऐसा वक्त है जहां उम्मीद खत्म होती है, तो सुबह वो पल है जो हर एक उम्मीद का एक नया पल एक वक्त लेकर आती है, एक सुनहरी किरण के साथ सुबह के साथ। और एक साथी स्नेहिल नमस्कार के साथ लिखते हैं कि शब्दों को चुराकर गीतों में संवारे हूं मैं, और शामे दिल की कसम आ भी जा, आसमान से आया फरिश्ता, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। तो मैंने कहा ना कि आप लोग भी गानों के कुछ कुछ करीब पहुंच चुके हैं। शब्दों को तो आपने ढूंढ लिया लेकिन गानों के बहुत करीब हैं। एक कमेंट में लिखते हैं कि हवा के धीमे झोंकों में जब यादें अपनी दस्तक देती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त की किताब का कोई पुराना पन्ना फिर से मुस्कुरा उठा हो। ढलती शाम अक्सर तन्हाई की सुर्खी ओढ़ लेती है लेकिन वही तन्हाई हमें खुद से मिलने का मौका भी देती है। इंसान अक्सर मंजिलों की चाह में रास्तों के सुकून को भूल जाता है और जमाना उसे कामयाबियों के तराजू में तौलता रहता है, मगर हकीकत तो ये है कि दुनिया की भीड़ में खो जाने के बाद भी रूह की असली चमक वही पा सकता है जो अपनी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर एक नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत गहरी और सच्ची बात आपने लिखी है कि टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर वो नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो वहीं एक साथ ही लिख रहे हैं कि सदियों से मानव जाति ने चंद्रमा को प्रेम और प्रेमियों से अटूट रूप से जोड़ रखा है। कहीं पर वो प्रेम करने वालों को आपस में एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में एक बात करने वाला साथी भी मानते हैं। वहीं एक साथ ही लिख रहे हैं कि आज की इबारत बड़ी दिलकश है। तो दूसरे साथी ने लिखा, आज शब्द गीतमाला में दोपहर में ही शाम रात और चांद

बात होगी तो शीतल चांदनी का अनुभव कराते हुए गाने इस चिलचिलाती धूप की तपिश में थोड़ा सुकून का एहसास जरूर कराएंगे। वैसे भी इतनी गर्मी है, गर्मियों में गाने बड़ा ही सुकून देते हैं साथियों। एक साथी ने ढेर सारे गानों की लिस्ट भेजी है हमारे पास। लिखते हैं, इबारत अनुरूप संभावित गाने हैं, टिम टिम तारों के बीच, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, चांद सी महबूबा हो, ठंडी हवाएं, गया अंधेरा हुआ उजाला, चमका सुबह का तारा, सच्चाई छुप नहीं सकती, वगैरह वगैरह। तो एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत दिल के अरमानों को ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है, शाम की रूमानी ख्याल रातों में अंगड़ाई लेती है, टिमटिमाते तारे चांद की ठंडक उन पर स्नेह की वर्षा करती है, सुबह जब ख्वाब टूटता है तो सूरज की रोशनी मानो पुकारती है, चलो अभी मंजिल दूर है, बहुत कुछ करना है, बहुत चलना है। ख्वाब और हकीकत का ताना बुना पर आधारित लाजवाब इबारत है, संगीत में सफर का इंतजार रहेगा। तो इंतजार खत्म हो चुका है।

साथियों, बताइएगा जरा कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी कर दे तो वो ख्वाहिश क्या होगी, जरा बताइए। तो जब जिक्र आसमान का चला है तो हम भी जरा देखें कि कौन है वो फरिश्ता जो हमें प्यार का सबक सिखाने के लिए ऊपर से आया है।

मोहम्मद रफी की गायकी का ये बड़ा ही चुलबुला सा अंदाज आपने सुना एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गाने में। एक साथी ने लिखा है, वाह भाई वाह, एन इवनिंग इन पेरिस का ये जबरदस्त गीत, हेलीकॉप्टर पर शम्मी कपूर और समुंदर में शर्मिला टैगोर। और एक साथी ने लिखा है कि आसमान से आया फरिश्ता शम्मी कपूर है, शर्मिला टैगोर को प्यार का सबक सिखलाने पेरिस के आसमान में उड़ता हुआ आया है। क्या बात है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर आसमान का एक तारा आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। एक साथी ने लिखा है कि एक ख्वाहिश है बस इस जिंदगी में, तुम साथ रहो हर खुशी और हर गम में, आपके सवाल का जवाब है। क्या बात है, आपका जवाब हमें मिल गया। बहरहाल कि आपकी ख्वाहिश यही है। तो भाई दूसरे साथी लिख रहे हैं कि कमेंट शामिल होने पर मन अजय सा लगता है, लगता है यज्ञ सफल हुआ, लंबे इंतजार का मीठा फल प्राप्त हुआ। वाह क्या बात है भाई, मैं समझ सकती हूँ आप सबकी भावनाओं को। एक साथी लिख रहे हैं कि काफी दिन बाद आपका आना हुआ और आपको सभी श्रोताओं को नमस्कार है। जीवन का सुकून वहां मिलता है जहां हरियाली, पानी, नदियों की कलकल, झरनों का कोलाहल, चिड़ियों की चहचहाहट हो, और इसी को बचाकर रखना हमारा काम है। बिल्कुल सही बात। चलिए एक बार मैं टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूँ, और वो साथी जो अब तक शब्दों का चुनाव नहीं कर पाए हैं उन्हें शायद सहूलियत हो जाए। तो आज का टेक्स्ट है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिलों के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर जमाना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए एक नया आसमान खोज ही लेता है, और आपको खोजने हैं इनमें से शब्द। एक कमेंट आया है कि आपने सही कहा, जो भी फैसला हो अच्छा या बुरा हमें दोनों को स्वीकार करने में अक्सर वक्त लगता है, मगर वक्त के साथ देखें तो सही होता है। अक्सर दुनिया के नियम हमें बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सच्चा दिल हमेशा उन बेड़ियों से ऊपर उठकर अपनी राह खुद तलाश लेता है। आंतरिक शक्ति ये विचार स्पष्ट करती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा सच्चा दिल है, जो अंधेरे से डरता नहीं बल्कि नया आसमान खोजने का साहस रखता है।

अनेक साथी लिख रहे हैं कि भाई बड़ी खूबसूरत है, उत्सुकता दिलचस्पी से मैं सुन रहा हूँ, गीतों का आनंद ले रहे हैं हम, आप आए बाहर आई और आपके कार्यक्रम में बहुत सुकून से भीषण गर्मी में ठंडक पहुंच रही है। बहना जी बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगलमय शुभकामनाएं, आप सभी का दिन शुभ हो। तो वहीं एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है, अभी तक के सुरीले सफर में ये महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि कुछ गीत रिपीट कम हो रहे हैं, कुछ अनसुना गीत, कुछ कम सुने गीत सुनने को मिल रहे हैं। एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है और बड़ी ही उसकी जो शब्द हैं बहुत ही सुंदरता से चुने गए हैं। लिखते हैं कि हिंदी फिल्म गीतों और कविताओं में चंद्रमा को अक्सर प्रेम का गवाह और प्रेमी के सुंदर चेहरे का प्रतीक माना जाता है। लेखकों ने चंद्रमा की तुलना नायिका के मुखड़े से की है, ये प्रेमियों के लिए शांति और शीतलता का प्रतीक है। पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से रोमांटिक माना जाता है, जो मिलन और विरह दोनों भावनाओं को जगाती है। भारतीय संस्कृति में चांद केवल एक खगोली नहीं है, बल्कि ये भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। गीतों में चांद से बातें करना या उसे संदेश वाहक बनाना प्रेमियों की एक पुरानी पहचान रही है। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से चंद्रमा प्रेमियों की पहचान है, क्योंकि ये मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और सौंदर्य को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे प्रमुख प्राकृतिक तत्व है। बहुत ही अच्छी बात लिखी है इन्होंने। तो वहीं दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई मेरी लिखी हुई इबारत का पहला गीत शामिल, आसमान से आया फरिश्ता। तो क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको।

एक कमेंट में लिखा है कि भाई सुरीला सफर का हम और हमारा बेटा ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कोई मेहमान आने वाला हो, क्या बात है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि अभी मैं ऑटो में हूँ, बस घर पहुँचते ही हम आपके साथ आराम से इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो बिल्कुल आप आहिस्ता आहिस्ता सहूलियत के साथ घर पहुँचें, तब कार्यक्रम का आनंद लें। साथियों हर शाम एक बड़ा ही सुरीला सा पयाम लाती है, आप बताइएगा कि आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शाम उसकी कोई याद हमारे साथ साझा कीजिए। यकीनन शाम की चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनने लगती है तो नील गगन पर टिमटिमाते हैं तारे, तो ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत अफसाने लिख रही हो। तो जब जिक्र शाम का चला है तो क्यों ना शाम से जुड़ा एक गाना हो जाए। बहरहाल जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो अभी तक मुझे आप सबकी लिस्ट में कहीं नहीं दिखा। प्लीज अपने मन को टटोलिए, कहीं ये गाना आपके दिल में तो नहीं है। जरा बताइए इसके शायर का नाम।

0: तो भाई ये गाना था कानून और मुजरिम फिल्म से, आवाजें थी सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर की। हमने पूछा था इसके शायर कौन है, चलिए उसकी बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कित

इस खूबसूरत से गाने के लिए हमने पूछा था इसके शायर का नाम, तो कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हैं। आप सब ने लिखा है कि इसके शायर थे अहमद वसी। जी हाँ, अहमद वसी का ये कलाम था, फिल्म थी कानून और मुजरिम। और इसको स्क्रोलिंग के बाद मुझे न जाने कितने गानों में, कितने कमेंट्स में ये गाना नज़र आया। आप सबकी पसंद शायद मुझसे काफ़ी हद तक मिलती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में मिलते जुलते गानों को आपने भी चुना। हमारे एक साथी ने लिखा है कि शाम मेरी मसूरी में गुजरी थी, बहुत ही अच्छा ढलते सूरज के साथ वो सूरज की किरणें, पहाड़ों के पीछे से वो छुपना, वो नज़ारा बहुत सुंदर था। मैंने फ़ोटो खींचकर अभी भी जो मेरे पास है, सच में शाम तो मुझे बहुत अच्छी ही लगती है। मैं हर रोज़ ही, कल ही मैंने एक फ़ोटो खींची है। जैसा

पूछा भी था कि आपकी सबसे खूबसूरत यादगार शाम कौन सी है, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए। वैसे होता है ना साथियों कि हम जब अपने अनुभव साझा करते हैं तो वही अनुभव किसी दूसरे के लिए आशा की किरण बन जाते हैं, उनके होठों की मुस्कुराहट बन जाते हैं। एक कमेंट में साथी ने लिखा है कि हाँ जी शाम तो हर किसी को अच्छी लगती है, मेरी मम्मी के शाम के टाइम जब शादी नहीं हुई तो वो नानी के घर नदी के किनारे जाया क्या लिखा है इन्होंने जाया करती थी। अरे वाह। एक कमेंट में साथी ने लिखा है मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी शाम वो है जब मेरी कक्षा 12 का बोर्ड का परिणाम आया था और मैंने 96.96% के साथ पूरे गांव में टॉप किया था। तो भाई सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और आगे लिखा है कि अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब मिलने आए हुए थे और मेरे माता पिता की आंखों में गर्व की चमक को देख कर मेरे लिए वो शाम अमिट हो गई। बिल्कुल, बहुत खुशी का पल होता है माता पिता के लिए, गर्व का पल होता है। माता पिता अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और जब वो उम्मीदें साकार हो जाती हैं तो यकीनन उनका सर गर्व से उठ जाता है। एक साथी ने लिखा है कि अपने वादे के मुताबिक एक छोटे से अंतराल के बाद मैं आपके सामने कुछ संभावित गीतों की फेहरिस्त पेश करता हूं, ये आपकी लिस्ट में से मेल खा लें तो मैं उसे अपनी खुशनसीबी समझूंगा। इन्होंने कुछ गाने लिख भेजे हैं। आगे लिखते हैं कि ये मेरे कुछ तराने हैं, अगर आपकी लिस्ट से मेल खाएं तो बड़ी खुशी महसूस होगी, अगर ना भी मेल खाएं तो कोई गम नहीं, अगली बार फिर नई उम्मीद के साथ कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, ये उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। और एक साथी ने लिखा है कि जैसे कि एक आसमान का एक तारा हमारी कोई ख्वाहिश पूरी करे तो वो क्या होगी। तो एक साथी लिखते हैं कि ख्वाहिश पूरी करने की बात हो तो मैं यही ख्वाहिश मांगूंगी कि मेरे वे सभी जो अपने जो मुझसे बिछड़ गए हैं वे मुझे फिर से मिल जाएं। तो एक साथी लिखते हैं कि अपनी ख्वाहिशों की बात पूछी है तो इंसान की ज़िंदगी किसी किसी की पूरी होती है, विविध भारती के सिवा कोई चैनल नहीं है, बस यही मेरी ख्वाहिश है। तो बस जुड़े रहिए विविध भारती के साथ। एक कमेंट आया है, लिखते हैं दुनिया में सबसे अच्छी चीज जिसे इंसान को स्वीकार करना चाहिए वो है जीवन की वर्तमान स्थिति को प्रेम और समझदारी के साथ स्वीकार करना, इसे ही स्वीकार कहते हैं, जो मन की शांति संतोष और हर हाल में खुश रहने की कुंजी है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि हमारी मर्जी के अनुसार नहीं चलता। हर शाम अपने समय पे आती है, सूरज अपने समय पे उदय होता है और हर सुबह सूरज का उदय हमारे अंदर उम्मीद जगाता है, जीने का हौसला देता है कि उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करो। तो सुनिए ये गाना, बताइए फिल्म का नाम।

हेमंत कुमार का गाया ये गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था इस फिल्म का नाम, आप सभी ने लिखा हरिश्चंद्र तारामती फिल्म लाजवाब गीत हेमंत कुमार जी की आवाज में। तो भाई एक साथी लिख रहे हैं कि बेहतरीन गीत है ये हरिश्चंद्र तारामती फिल्म से, तो दूसरे साथी बहुत खुश हैं, उन्होंने लिखा है और उनकी खुशी दोगुनी हो गई है और उनको हम बहुत बहुत बधाई भी दे रहे हैं, आप सबको बधाई। और लिखते हैं कि मेरी इबारत का दूसरा गीत भी शामिल, वाह सूरज रहे तू जलते रहना। तो भाई आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आप सबकी पसंद हमसे मिल गई आज के इस कार्यक्रम में। एक कमेंट पे लिखते हैं कि विविध भारती, सुरीली धड़कन, शायराना तान, आप सभी को नमस्कार। और सुरीली धड़कन के लिए इस नए निराले मनोरंजक कार्यक्रम सुरीला सफर में आज प्रकृति के सौंदर्य को जिस तरह समाहित किया गया है काबिले तारीफ है, और दोपहर की चिलचिलाती धूप में ये गीत ठंडी फुहार का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि जिंदगी में कई शाम ऐसी आई जो यादगार बन गई और उम्मीद है जब तक जिंदगी है अपनों के प्यार बदौलत ऐसी शाम बार बार आएंगी। पर आज जिक्र करेंगे अभी के लेटेस्ट शाम का, जब अपनी शादी की सालगिरह पति और बेटी के साथ मनाई। खास इसलिए थी कि बेटी का योगदान था इस शाम को स्पेशल बनाने में। कई सालों से पढ़ाई और जॉब के कारण बच्चे हर बार साथ नहीं होते, जब होते हैं तो वही समय स्पेशल हो जाता है। यकीनन अपने परिवार के साथ बिताया हर समय, हर सुबह शाम दिन रात बहुत स्पेशल होती है, यादगार होती है। एक साथी ने लिखा है, घनी काली रात के बाद नया सवेरा आशा, सकारात्मकता और नई शुरुआत का संदेश लाता है। ये जीवन की कठिनाइयों के बाद उजाले का आश्वासन देता है। ये मुहावरा दर्शाता है कि हर अंधेरे दौर के बाद रोशनी जरूर आती है, जैसे हर रात सूर्योदय के साथ समाप्त होती है। कविताओं और प्रेरणादायक लेखों में इसे हार के बाद जीत या निराशा के बाद खुशी के रूप में चित्रित किया जाता है। ये हमें धैर्य और आशावाद रखने की सीख देती है। और हमारे साथियों ने बहुत सारे गाने वाह लिख के भी भेजे हैं। एक साथी ने दो पंक्तियां लिख भेजी हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, सूरज के डूबते ही आसमान में रंग बिखर जाते हैं, जैसे शाम के साथ दिल में यादों के दीप जल जाते हैं। क्या बात है। यकीनन साथियों, जब रात गहराती है और आसमान तारों से भर जाता है, तो ऐसे में कोई ऐसा शख्स जिसकी बातें आज भी आपके दिल को सुकून देती हों, उस एहसास को हमारे साथ शेयर कीजिए। क्योंकि किसी की उम्मीद बन सकती है आपकी बातें, आपके अनुभव। वैसे जब बातें तारों की चल रही हैं तो ये गाना सुनिए और ज़रा बताइए। और वैसे ये गाना मुझे आपकी लिस्ट में मिल चुका है बहुत सारे साथियों की, बहुत ही प्यारा गाना है इसके।

हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफर अपने अंतिम पड़ाव पर, जी हाँ अब समाप्ति की ओर, क्या समाप्त हो ही गया क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि कुछ और कमेंट्स लें, कुछ और गानों को आप तक पहुंचाएं। बहरहाल आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए ढेर सारा शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबकी पसंद आज हमसे बहुत बहुत बहुत मिल गई और गाने आपके हमारे बहुत करीब थे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर के बाद। बहरहाल आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो हैं, ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं। और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिक्वेरा से जो बातचीत हमने की है, अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशीन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती है। ज़्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका सटीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है, इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण: लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमजोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टिया लगाएं, घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय: ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकले। ज़्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चलें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जो मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें।

0: और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके, तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं। और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं, तो 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस। और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक, जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है। और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुँची है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये खास तौर पर वो जरूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो।

0: जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधी एक विषय है जो मरीज की सेवा भाव के दायित्व का निर्वहन करते हैं और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख, शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनका उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का, एक अंतराल का।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा महेश्वरी
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं, और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है।

0: या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको आईवी लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि नहीं।
2: बिल्कुल। और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजे, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
1: बिल्कुल।
2: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी है, वो है विनीता सिंह। और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक के संस्थापक हैं, उनकी CEO हैं और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
1: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया।
2: क्या बात है।
1: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
2: बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था, ये एक पृष्ठभूमि जांच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
1: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहां से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
2: तो ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीजें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीजें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली।
1: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये समझा कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ, विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
2: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, काफी किफायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था, ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेजी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
1: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल, चटक और अलग अलग रंगों का काजल।
2: हाँ,
1: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद ई प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगे।
2: और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाए जाए, उनका ब्रांड इसी चीज पर काम कर रहा है।
1: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व

0: तत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है।
1: और वनिता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई और इस तरह से कहते ना कि वो आगे बढ़ती रहीं और अपनी मंजिलों को हासिल करती रहीं और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहें।
0: जी, और वक्त हो चला एक गीत का।
1: जी,

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की 1 लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी वाले भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।

0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता एक और संदेश है। सौ सुनार की एक लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और सौ सुनार की एक लोहार की ये लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
0: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशाही कर दिया और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की एक लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
1: तो गीत सुने अबे
0: जी।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददिहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे, जो कि सब उस वक्त वहाँ जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मज़ा आता था। हमारी चाचियाँ और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, या बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में हैं, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चों और परिवार का, कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ जरूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटके, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत तेज होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय
1: वो भी। और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, हाँ। जब उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना, तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज को आप छुपा दीजिए कहीं, हाँ। और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज ढूंढ कर देनी है। तो सच में उन्हें इतना मजा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहाँ उन्हें तुरंत उनके हाथ में न वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किससे कहानियां सुनाना बड़े मजे से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियां नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें। और वो कहानियां उनकी चार चार दिन, पांच पांच दिन खत्म ही नहीं होती थी। हम इंतजार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। तो इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी।
1: वो जो पुरानी छुरी जो होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मजा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हम उनको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, हमने काटी, वो सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
0: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
1: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई है, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का, दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते। और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज़्यादा ही, हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के खिलाती होंगी। और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो, उनके बच्चों को जो आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते हैं, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं।
0: हाँ,
1: उनके हाथ की उगी हुई जब चीजें होंगी ना, तो वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे
0: और
1: बड़ा हो रहा है।
0: इसी तरह से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे। जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, और बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
1: चलिए।

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सही।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान हैं और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताज़ा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी।
1: ना वो शहर है ना वो देहात था, तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा ज़रूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: क्रिकेट में,
1: हर चीज़ में गुजारते थे और हर मौसम का मज़ा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहाँ लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे, तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ, तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं। और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गाँव ने मेरे ऊपर किया है।
0: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
1: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गाँव चांदबी

0: बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना। सदाशिव जी, इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें।
0: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये। हाँ
0: और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ, हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगा।

0: था तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे। इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
1: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
0: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
1: जी।
0: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
1: जी।
0: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
1: उस समय।
0: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
1: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
0: नहीं। नाटक करता रहा
1: जी,
0: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
1: जी।
0: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
1: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
0: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
1: जी।
0: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
1: जी।
0: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
1: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
1: जी।
0: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
1: तो आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
0: जी।

0: करने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
0: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मैं मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसा लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नया होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, जी, होता है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं किसी होटल में, चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी जी,
1: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्न विकाई चेत, वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं, सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरे

नजरों ने नजरों से जो कह दिया है सब कुछ, तो अब पर्दा किस बात का है। अनजान थे कल, आज दिल के इतने करीब हो, तो फिर पर्दा किस बात का है।

दिल की बातें हैं, ये कोई पानी पे लिखी इबारत नहीं है। संभाले हैं दर्द एक दूजे के, ये कोई तिजारत नहीं है।

कुछ इस तरह से जुड़े हैं दिल से दिल के तार, बस मुस्कुरा भर देते हो और ढह जाता है शिकवों।

है रात रानी की खुशबू तेरी सांसों में, इस मदहोशी का क्या करें। एक होने को बेताब है तन और ये मन, दिलों की गर्मजोशी का क्या करें।

0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
2: अभी राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जा रहे थे। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं निमाड़ी लोकगीत।
3: आप सुनी रहे आज निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।

अभी आप सुन रहे थे निमाड़ी लोकगीत FM 101.2 MHz पर। आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। अब प्रस्तुत है युवा दिलों की वाणी कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। युववाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त शांभवी का तीखी धूप के बाद ठंडक भरी सुहानी शाम सा सुकून भरा और प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हर मंगलवार की तरह हम आपको आज भी लेकर चलेंगे एक खूबसूरत से शहर के मनोरंजक सफर पर, क्योंकि आज युववाणी के ख़जाने में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे शहर। लेकिन दोस्तों, सफर का मजा लेने से पहले हमारे आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न भी जान लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस शहर को यूनेस्को की साल 2023 की रचनात्मक शहरों की सूची में संगीत की श्रेणी में शामिल किया गया है? और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? दोस्तों, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप सभी कार्यक्रम के अंत तक खोज कर रखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ युववाणी में।
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: एक लाख दो

0: बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, जब भी हम चिकित्सा या स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला विचार आता है एक डॉक्टर का। दोस्तों, जिस तरह डॉक्टर हमारी चिकित्सा के लिए ज़रूरी हैं, ठीक उसी तरह नर्स भी मरीजों के स्वास्थ्य, चिकित्सा, कल्याण और सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाती है। और उनके इसी योगदान का जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष आज यानी 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। दोस्तों, साल 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की एक अधिकारी डोरोथी सदरलैंड द्वारा नर्स दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद साल 1965 से 12 मई को यह दिवस मनाते आ रहे हैं। यह तिथि सभी नर्सों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म वर्षगांठ है, जिन्हें व्यापक रूप से आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक माना जाता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जनवरी 1974 को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस घोषित किया गया और इस वर्ष इस दिवस का थीम है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं, यानी अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव फ्यूचर। वैसे दोस्तों, सच ही तो है, ये नर्स अपने सेवाभाव और स्वास्थ्य सुरक्षा से मरीजों की जिंदगी में कुछ लम्हे खुशियों भरे और सेहत भरे देने में सहायक होती हैं। और ऐसे में हमारा भी ये फर्ज है कि हम अपनी जिंदगी के इन कीमती लम्हों को संभाल कर खर्चें।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, झारखंड राज्य की ओर जाने वाली गाड़ी आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से निकलने को तैयार है, तो रेडियो से जरा नजदीक ही ले आइए और अपनी कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं झारखंड राज्य के शोडोई कोला के रूप में प्रसिद्ध 16 कलाओं की भूमि सरायकेला की मनोरंजक सैर पर। दोस्तों, सरायकेला शहर सरायकेला खरसावां जिले का एक ऐतिहासिक शहर और जिला मुख्यालय है। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और रियासती गौरव से सुसज्जित सरायकेला खरसावां की ऐतिहासिक भूमि पर सरायकेला रियासत की स्थापना सन 1620 में पोड़ाहाट के कुंवर विक्रम सिंह प्रथम ने की थी, जबकि खरसावां रियासत की स्थापना सन 1650 में कुंवर पदम सिंह द्वारा की गई। दोस्तों, ब्रिटिश काल के दौरान यह दोनों रियासतें छोटा नागपुर क्षेत्र की महत्वपूर्ण रियासतें थीं, जिन पर सिंहदेव वंश का शासन था, और इसीलिए जमशेदपुर के निकट सुबर्णरेखा नदी के तट पर स्थित इस सुंदर से शहर को पहले सिंहभूम पीढ़ कहा जाता था। वैसे तो इस शहर की आधिकारिक प्रशासनिक भाषा हिंदी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बंगाली और जनजातीय भाषाओं के साथ ही उड़िया और संथाली विशेष रूप से बोली जाती हैं।

दोस्तों, सरायकेला शहर की कला और संस्कृति भी इस शहर की तरह ही ऐतिहासिक और समृद्ध है, जिसकी झलक आपको सरायकेला राजमहल और खरसावा महल की पारंपरिक वास्तुकला में देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ का पारंपरिक सरायकेला छऊ नृत्य और हस्तकला शहर में विशेष आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, छऊ या छौ एक मार्शल और लोक परंपराओं वाला शास्त्रीय नृत्य है जो तीन शैलियों में पाया जाता है और इनका नाम उस स्थान के नाम पर रखा गया है जहाँ वे प्रदर्शित किए जाते हैं, यानी पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, झारखंड का सरायकेला छऊ और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ। इनकी वेशभूषा शैलियों के अनुसार भिन्न होती है। परुलिया और सरायकेला में पात्रों की पहचान के लिए मुखौटे का उपयोग किया जाता है। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, छऊ नर्तकों द्वारा प्रस्तुत कहानियों में हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत के साथ ही पुराण और अन्य भारतीय साहित्य की कहानियां शामिल होती हैं।

दोस्तों, यदि बात करें सरायकेला में घूमने फिरने के प्रमुख स्थानों की, तो सुबर्णरेखा नदी के तट पर स्थित चंदिल बांध, दलमा वन्यजीव अभयारण्य और 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित दलमा टॉप के साथ ही खड़कई और सुबर्णरेखा नदी के संगम पर स्थित दोमुहानी और यहाँ का दुरदुरी जलप्रपात या हिसाकोचा जलप्रपात विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा दोस्तों, सरायकेला में प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने के लिए डोबो बांध और सतनाला बांध, सुबर्णरेखा नदी के किनारे स्थित इच्छागढ़ घाट और यहाँ की स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने के लिए कंदरा बाजार क्षेत्र घूमकर आपको आनंद ही आ जाएगा। और दोस्तों, चंदिल के पास स्थित भगवान शिव को समर्पित प्राचीन जयदा शिव मंदिर, ग्रामीण जीवन और स्थानीय कला से सजा अमादुबी ग्रामीण पर्यटन केंद्र, गंजिया बैराज और खोकरो जलप्रपात देखना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों, सरायकेला के इन झरनों और नदियों में झरझर करते बहते हुए हम भी इस शहर के मनोरम सौंदर्य का आनंद लेते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, सरायकेला में इतना घूमने फिरने के बाद आइए यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजनों का स्वाद भी चख लेते हैं। दोस्तों, सरायकेला अपने लड्डुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यह लड्डू अपने अनूठे स्वाद और पारंपरिक इतिहास के लिए जाना जाता है। यदि बात करें सरायकेला तक पहुंचने के परिवहन मार्गों की, तो सरायकेला से निकटतम हवाई अड्डा रांची में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और जमशेदपुर में सोनारी हवाई अड्डा। साथ ही यदि आप रेल यात्रा के शौकीन हैं, तो निकटतम रेलवे स्टेशन टाटा नगर जंक्शन जमशेदपुर है, जो कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। साथ ही आप रांची और जमशेदपुर से सड़क मार्ग द्वारा सरायकेला पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों, बात करें सरायकेला घूमने के श्रेष्ठ समय की, तो अक्टूबर से मार्च तक का समय सुहावने मौसम और दर्शनीय स्थलों की यात्रा का आनंद लेने के लिए आदर्श समय है। साथ ही यहाँ के वार्षिक चैत्र पर्व उत्सव और पारंपरिक छऊ नृत्य का अनुभव करने के लिए अप्रैल के मध्य का समय उत्तम होता है।

दोस्तों, यह तो था हमारा आज का क्रम हमारे शहर, जहां आज हम आपको रेडियो के माध्यम से लेकर गए झारखंड राज्य के सरायकेला शहर की सैर पर। इसी के साथ अब समय हो चला है कार्यक्रम के आरंभ में पूछे गए सामान्य ज्ञान के दो प्रश्नों के उत्तर देने का। आज का हमारा पहला प्रश्न था, किस शहर को यूनेस्को की साल 2023 की रचनात्मक शहरों की सूची में संगीत की श्रेणी में शामिल किया गया है? दोस्तों, इसका उत्तर है मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर। और दोस्तों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? इसका उत्तर है प्रशांत महासागर। दोस्तों, यह तो थे हमारे आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्नों के उत्तर। इसी के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम संपन्न करने की दे अनुमति आपकी दोस्त शांभवी को। फिर मिलेंगे, तब तक हैव अ गुड टाइम, गुड बाय, नमस्कार।

अभी युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: तू है तो
1: हम हो चुके आपके। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि

0: साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
2: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूं और कहाँ दूं।
1: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
2: क्यों?
1: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
2: वो कैसे?
1: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
2: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
1: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
2: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
1: आप कब आ रहे हैं
2: आकाशवाणी खंडवा पर?

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने।

0: ने बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
4: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: बातों से बातों का सिलसिला,
1: आदत से इबादत का सिलसिला।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मई से 5 देशों की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात से करेंगे शुरुआत। ऊर्जा सहयोग और व्यापार पर होगी चर्चा। लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त कल होगी जारी। 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होंगे 1,835 करोड़ से ज्यादा रूपए। भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर हुई चर्चा। और कुछ ही देर में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई के बीच संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से होगी। इस यात्रा के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया।
1: पहला पड़ाव प्रधानमंत्री का संयुक्त अरब अमीरात का होगा और इस दौरे के दौरान ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है।

0: इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है। यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री के दौरे का एक मुख्य आधार है।
1: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करेंगे। बैठक में शामिल विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश और फ्रांस के बीच निवेश और कारोबारी संबंध मजबूत करने के मकसद से आज भोपाल में इंडो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप और भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो समेत फ्रांस की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई है और अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। करीब 23 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। हालांकि इन छात्रों को न नया आवेदन करना होगा और न ही दोबारा फीस भरनी होगी, बल्कि पहले दी गई फीस भी वापस की जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया,
2: इसको जांच करने की जिम्मेदारी कि 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी, पूरी फोरेंसिक्स लेके करेगी और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। जो शिकायत आई थी उसमें अगर एक इंच की भी, एक आयोटा की भी सच्चाई है तो हम उसके ऊपर लेके कार्रवाई किए हैं। अब किस हद तक है, कितना हद तक है, उसको करने में समय लगेगा। हम जितना डिले करेंगे उतना यह समस्या बढ़ेगी, उतना अगर हमको री एग्जाम करना है तो वो निर्णय आज हम ले रहे हैं तो हम जल्दी कर पाएंगे।
1: अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुवाहाटी के खानापारा मैदान में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश के आयुष विभाग ने योग से आरोग्यता की ओर थीम पर 21 जून तक विशेष अभियान चलाने की पहल की है। हर घर योग के इस अभियान का मकसद हर घर तक योग को पहुंचाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। साइबर अपराधों और बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत संदिग्ध लोगों का डेटा AI सिस्टम को दिया जाएगा जो उन बैंक खातों को पकड़ेगा जिनका इस्तेमाल साइबर ठग ठगी की रकम इधर उधर करने के लिए करते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में धार भोजशाला प्रकरण की अंतिम सुनवाई आज पूरी हो गई। करीब 2 घंटे की बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुस्लिम पक्ष ने ASI की 98 दिनों की सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि वैज्ञानिक रूप से अभी तक यह सिद्ध नहीं हुआ है कि यह स्थल मंदिर है या मस्जिद। वहीं हिंदू पक्ष ने सर्वे और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भोजशाला को वाग्देवी मंदिर बताते हुए पूर्ण अधिकार की मांग की है। इस साल प्रदेश में गेहूं का उत्पादन 365 लाख मैट्रिक टन तक पहुंच गया है जो देश के कुल उत्पादन का 18% है। भारत से होने वाले कुल गेहूं निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी 35-40% है और शरबती व ड्यूरम गेहूं की मांग अमेरिका, जर्मनी, इटली और दुबई जैसे देशों में बनी हुई है। प्रदेश में इस बार गेहूं खरीदी का लक्ष्य 100 लाख मैट्रिक टन रखा गया है। प्रदेश में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर

रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए शासकीय संस्थाओं और रेस्को विकासक इकाइयों के बीच विद्युत क्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। रेस्को पद्धति के तहत सरकारी विभागों को बिना किसी निवेश के 3.78 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी और पहले दिन से बचत शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ के न्यायमूर्ति डीडी बंसल आज अपने सरकारी आवास से 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर अदालत पहुंचे। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो सभी को साइकिल चलाकर पेट्रोल डीजल की बचत करनी चाहिए। देवास जिले में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मोरूखेड़ी ग्राम पंचायत में जल संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया है। पहाड़ी पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 350 कंटूर ट्रेंच बनाई गई हैं। प्रशासन का दावा है कि इससे हर साल करीब 13 लाख लीटर बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मिलकर कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्कूल खुलने के बाद पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 तक के लिए भी एआई की पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के 11-11 मैच में 14-14 पॉइंट्स हैं। आज जीतने वाली टीम सीधे पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना, झाबुआ और बैतूल में जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। कलेक्टर ने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं से के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। आगरमालवा में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण कार्य में नलखेड़ा ग्रामीण के सर्किल 20 ने तय समय से पहले 100% काम पूरा किया। खंडवा में प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अधिकारियों को ईंधन बचाने के लिए काफिले में केवल जरूरी वाहन रखने के निर्देश दिए। देवास में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ यात्रा 20 जून को रवाना होगी। जिले को 196 सीटों का कोटा मिला है। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में जन्मी मादा चीता के चारों शावक मृत पाए गए। सुबह मॉनिटरिंग टीम को डेन साइट के पास शव मिले। शहडोल में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर, माफ कीजिए, सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला हमारा सभी भाई बहन नख, आपकी बहन माधुरी सेन की राम राम। भाई बहनों, गर्मी दिन पर दिन अरु बढ़ती जा रही। नहीं ना गर्मी का मौसम सी जिमा तेज धूप गर्म हवा सी सभी परेशान छे। मनुष्य का साथ साथ हमारा पशु पक्षी नप भी एको असर देखना का मिली रहे। भाई बहनों, गर्मी में पशु पक्षी नख भीषण गर्मी न लू सी बचाना का लेना हमका कई छोटा प्रयास करना की जरूरत।

0: अभी हमने सुने हो साधना उपाध्याय ना साथी ना को गायल योनी माड़ी लोकगीत।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: नो भाई बहनों, अब आपसे पूछ लेवा आज को खेती किसानी संबंधित सामान्य ज्ञान को प्रश्न। तो आज को हमारो प्रश्न छे कि संयुक्त बहुवर्षी न एक बीज पत्री वाला पौधा को कई नाम छे। न इना प्रश्न को उत्तर आप सोची घने राखजो, क्योंकि इना प्रश्न को उत्तर हम आपका देवांगा कार्यक्रम का अंत में। जब तक आनंद रहो न सुनता रहो कार्यक्रम किसान वाणी। भाई बहनों, शासन द्वारा किसान का हित में कई योजना न चलाई जा रही है।

जेकासी किसान भाई नख मुनाफो होए। इन योजना मसी एक योजना छे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। शासन द्वारा चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान नख फसल खराब होना पर आर्थिक सहायता देने का लेन शुरू करी गई थी। ई योजना वर्ष 2016 में शुरू करी गई थी। इन्हीं योजना को मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा कीट न बीमारी सी फसल नुकसान होना पर किसान का सुरक्षा देनु छे। साथ किसान न की आय स्थिर रखनु, खेती में आधुनिक तकनीक अपनाना का लेना प्रोत्साहित करनु, किसान नखा फसल नुकसान होना पर किसान नखा

0: इन्हीं योजना का मुख्य उद्देश्य छे। बात करा कि कौन लोग इन्हीं योजना को लाभ ले सका, तो सभी किसान जेमा छोटा सीमांत बटाईदार न किराया पर खेती करना वाला साथ ज ऋण लेना वाला न बिना ऋण वाला किसान दोनों आवेदन करी सकच। इन्हीं योजना में खाद्यान्न फसल में गेहूं धान मक्का तिलहनी फसल बागवानी न व्यावसायिक फसल लागू छे। भाई बहनों ने किन्हीं परिस्थिति में बीमा मिली सकेगा, तो सूखा बाढ़ ओलावृष्टि तूफान अधिक वर्षा जैसी स्थिति साथ ज कीट न रोग सी नुकसान न बुआई न हुई पाण की स्थिति में भी कटाई का बाद कुछ दिन तक प्राकृतिक नुकसान जैसी स्थिति में बीमा कवर होएगा। न किसान भाई न का कितनो प्रीमियम देनु पड़ेगा, तो खरीफ फसल पर 2%, रबी फसल पर 1.5%, न व्यावसायिक न बागवानी फसल न पर 5% देनु होएगा, न बाकी राशि शासन देगा। बात करा इन्हीं योजना में आवश्यक दस्तावेज न की, तो आधार कार्ड बैंक पासबुक जमीन का दस्तावेज खसरा खतोनी फसल बोना को प्रमाण मोबाइल नंबर न पासपोर्ट फोटो एम लगेगा। भाई बहनों अब बारी आवाज आवेदन करना की, तो बैंक या CSC सेंटर पर जावा ऑनलाइन आवेदन करा न प्रीमियम जमा होना का बाद बीमा सक्रिय हो जाएगा। बात करा क्लेम राशि कसी मिलेगा, तो फसल खराब होना पर किसान नख जल्द जानकारी देनु चाहिए। कई राज्य में 72 घंटा का अंदर नुकसान की सूचना देनु अनिवार्य रहे, फिर आधिकारिक जांच का बाद बीमा राशि तय करज न बैंक खाता में भेजी जाए। इन्हीं योजना में कई सीमा न छे, जैसे कभी कभी क्लेम आना में समय लगी सकज, सभी फसल हर क्षेत्र में शामिल नहीं होती है, समय पर आवेदन न सही दस्तावेज जरूरी छे। भाई बहनों ई योजना किसान नख फसल नुकसान सी आर्थिक सुरक्षा देज न खेती का सुरक्षित बनाना में मदद करज। न प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान नख लेण बहुत उपयोगी योजना छे। तो भाई बहनों अभी तक यदि आपने इन योजना को लाभ नहीं लियो हो, तो आप भी अपनी फसल को बीमा कराई खा इन्हीं योजना को लाभ जरूर लीजो। न भाई बहनों कार्यक्रम का आगे बढ़ावा न सुनाज ई भेंट वार्ता जिको विषय छे मोरिंगा सहजन की खेती। इना विषय पर जानकारी दे रही ग्राम पटालदा की प्रगतिशील महिला कृषक केसर पांचोले ने इनका से बातचीत करी रही बहन प्रणीता जैन।
1: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है ग्राम पटालदा की प्रगतिशील महिला कृषक श्रीमती केसर पांचोले। केसर जी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। राम राम।
2: राम राम।
1: भाइयों और बहनों केसर जी आज हमें मुरिंगा यानी सूजना की फली की खेती के बारे में जानकारी देंगी। तो केसर जी मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न ये है कि सूजना की फली की खेती करने के लिए आपके पास कितने एकड़ खेत है और आपने इसकी शुरुआत कब की?
2: मेरे पास तो मात्र 2 एकड़ खेत हैं और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं बहुत सी दीदियाँ जो आजीविका मिशन से जुड़ी सबसे पहले, और आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद हमने समूह का गठन किया। समूह का गठन करने के बाद में हमने एक संगठन बनाया और संगठन के बाद एक CLF बनाया जिसमें हमारे पास 39 गाँव की दीदियाँ हमसे जुड़ी हुई हैं
1: जी।
2: 39 गाँव की दीदियों को हमने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग दिलवाई और ट्रेनिंग देने के बाद में हमने उस ट्रेनिंग में मोरिंगा की खेती पे ट्रेनिंग की
1: जी।
2: मोरिंगा की खेती पे ट्रेनिंग लेने के बाद में हर दीदी को हमने एक एक एकड़ में मोरिंगा की खेती करवाई। मोरिंगा की खेती करने से हमें बहुत से फायदे मिले, उसके विषय में हमने जो जो फायदे थे उसके वो फायदे सभी गाँव में जाके चर्चा की, तो उससे यानी कि है ना बहुत सारी दीदियां हमसे जुड़ी हुई हैं और मोरिंगा की खेती कर रही हैं
1: जी। तो केसर जी मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये जो मोरिंगा की खेती कर रही हैं महिलाएं, इसमें केवल महिला कृषक ही शामिल है या आपने पुरुष कृषकों को भी शामिल किया है?
2: मैम देखिए महिलाएं तो जुड़ी हैं हमसे, परंतु महिलाओं के साथ अगर पुरुष साथ में ना खड़े होंगे यानी पुरुषों को भी साथ में लेना ही पड़ेगा
1: जी,
2: क्योंकि खेती में महिला के साथ साथ पुरुष का योगदान बहुत जरूरी है।
1: हम ये कह सकते हैं कि जैसे पति पत्नी जीवन गाड़ी के दो पहिए हैं, वैसे ही कृषि के भी दो पहिए हैं महिला और पुरुष
2: जी। मैम
1: केसर जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मोरिंगा चूंकि बड़े बड़े वृक्षों पर लगता है
2: जी मैम,
1: तो इसकी खेती करना एक लंबी अवधि के लिए मोरिंगा का इंतजार करने के समान है, क्योंकि जब तक वृक्ष बड़ा होगा उस पर फल नहीं बैठेंगे तब तक आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे।

0: तो मुरिंगा को उत्पादित करने में लगभग कितना समय लगता है और इसकी शुरुआत आपने कहाँ से कैसे करी?
1: मैम, हम जैसे समूह से जुड़े, समूह से जुड़ने पे हमें कृषि विज्ञान केंद्र से की ट्रेनिंग करवाई गई कि किसान महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जब हमने ट्रेनिंग की, हमने सोचा कि हमारी दीदियों को कुछ रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए हमने हर गांव में जाके एक एक मीटिंग ली और उनसे बोला कि भाई तुम पूरे खेत में ना लगाते हुए एक एकड़ में ही लगाइए और इसके फायदे देखिए, और उन्हें अच्छे से अच्छा बीज जो जल्दी से जल्दी आ सके और उससे हमें फायदा मिल सके। ऐसे बीज का यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र से हमने डिमांड रखी और उन्होंने हमें एक साल के अंदर जिस पेड़ में फलियां आ जाती हैं
0: जी
1: उस बीज को हमें दिलवाया समूह वालों को, और उसी बीज को हम लगा रहे हैं। तो हमारी दीदियों को 6 महीने के अंदर उसमें पत्तियां मिल जाती है, पत्तियों का पाउडर बनता है। संस्था के माध्यम से हमारी महिला किसान जो बहनें हैं वो इसकी खेती कर रही हैं, उसका पाउडर बना रही हैं और संस्था को दे रही हैं।
0: जी अब केसर जी, एक बात और है कि वैसे तो आपके पास 40 गांव की महिलाएं जुड़ी हुई हैं,
1: जी
0: यदि कोई और महिला इस ओर जुड़ना चाहती हैं तो उसके लिए उन्हें कहाँ संपर्क करना पड़ेगा?
1: खालवा ब्लॉक में रोशनी सेक्टर में एक CLF बना हुआ है जो महिलाओं का है, आजीविका मिशन के माध्यम से। तो जो भी दीदियाँ खालवा ब्लॉक से हैं तो वो तो सीधे हमसे जुड़ सकती हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे ग्रुप बने हुए हैं तो ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकती हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और खालवा ब्लॉक के अलावा आजीविका मिशन हर क्षेत्र में चल रहा है, आजीविका मिशन के माध्यम से जुड़ सकती हैं कि मोरिंगा की खेती इस एरिया की दीदियाँ कर रही हैं, तो हम इनसे मिलके इनसे जानकारी लें कि इसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है, वो भी हमारे साथ जुड़ के काम कर सकती हैं।
0: जी बिल्कुल। अब हम बात करते हैं मुरिंगा की खेती के बारे में।
1: जी
0: तो मुरिंगा की खेती करने के लिए सबसे पहले कैसी मिट्टी की आवश्यकता है, कौन सी खाद उर्वरक डालनी पड़ती है और इस पौधे को लगाने के लिए उचित समय कौन सा है?
1: जी इसमें यानी कि ना मिट्टी ज़्यादा काली मिट्टी भी नहीं चाहिए, और मिट्टी का कोई वो नहीं है कि अच्छी उपज वाली मिट्टी जो है ना, ये हर प्रकार की मिट्टी में लग जाता
0: लग
1: है।
0: जाती है।
1: फिर इसके लगाने का समय है मार्च, मार्च से लेके जून तक का इसका समय है लगाने का। और इसको दो प्रकार से लगा सकते हैं, एक नर्सरी तैयार करके और एक
0: बीज
1: डायरेक्ट
0: डालकर
1: बीज डाल के,
0: जी।
1: तो दोनों प्रकार से यानी इसकी खेती कर सकते हैं अपन।
0: और इसमें खाद और उर्वरक की कितनी मात्रा डलती है और कब कब डालनी पड़ती है?
1: इसमें ये जो पौधा छोटा होता है, बच्चा रहता है जब वो, इस पौधे को सिर्फ 2 महीने तक इसकी देख परख देख करने का रहता है। इसके बाद 2 महीने के बाद जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो अगर वो पौधा जमीन से टूट भी जाता है तो भी यानी वो डबल से निकल
0: उग
1: जाएगा।
0: जाएगा।
1: हाँ, तो इसमें खाद

0: किस्म का प्रेमी नहीं हूँ। एक खूबसूरत लड़की देखी और फिसल गए।
1: मुझे मालूम न था कि आजकल प्रेमी भी नकली बनने लगे हैं, उनमें भी और चीजों की तरह मिलावट आ गई है। कहाँ गए वो खालिस प्रेमी और उनका अमर प्रेम।
0: चलो रीटा चले, ये सब ढोंग है।
1: चलो
0: ये सब प्रेमी नकली है। आओ
1: और
0: चले।
1: सब प्रेमी सुने, मेरा आज का लंच, इवनिंग टी, डिनर और डांस सब मिस्टर कुमार के साथ है।
2: मिस्टर कुमार के साथ?
1: जी हाँ। अब आप इत्मीनान से पंडाल से बाहर जाकर आंसू खाने में अपनी अपनी प्रेमिकाओं को याद करके खूब आंसू बहाएं। हमें इजाजत दीजिए, हमें आपके तजुर्बे से कुछ नहीं लेना। बाय बाय।
3: ओ मैम,
4: प्रेमियों, भाइयों, आइए सब आंसू खाने में आंसू।
5: विश्व प्रेमी सम्मेलन, मदन मोहन खन्ना की लिखी ये झलकी अभी आपने सुनी। निर्देशक थे दीनानाथ। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश प्रीतम के संगीत निर्देशन में बोल कैसरुल जाफरी और संदीप श्रीवास्तव के आवाज शाश्वत सिंह की, फिल्म का नाम मेट्रो इन दिनों।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

तुमको मेरी कसम। अब सुनिए इस फिल्म का गीत राघव चैतन्य की आवाज में, बोल विक्रम भट्ट के संगीत, प्रतीक वालिया का।

चित्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लीजिए अब सुनिए तुमको मेरी कसम, इस फिल्म का गीत यासिर देसाई की आवाज में।

0: तुमको मेरी कसम। अभी आपने इस फिल्म में यासिर देसाई को सुना। गीत लिखा था श्वेता बोथरा ने, संगीत प्रतीक वालिया का था।
1: सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
1: बेचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
0: अब सुनिए कौशल किशोर का संगीत बद्ध किया और उन्हीं का गाया गीत हक फिल्म से। इस गीत को लिखा है कौशल किशोर ने, संगीत है विशाल मिश्रा का और आवाज भी विशाल मिश्रा की।

और ये है चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश परम सुंदरी फिल्म से। सचिन जिगर के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने। आवाजें हैं सचिन जिगर, विशाल मिश्रा और अमिताभ भट्टाचार्य के।

इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी

कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नीदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यावसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
3: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करे।

0: और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
2: आईसीएसईआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसईआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
3: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन, अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के

0: ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अब्दुल्ला फिल्म के गाने से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।
2: विविध भारती।

अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है अनुरोध।

0: यह है विविध भारती।
1: आज की फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी सुपग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: चंद्रमा।
1: भारतीय सिनेमा आज जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर राज किया था अभिनेता महिपाल ने।

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन अभिनेता थे।

सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच वाडिया, सोहराब मोदी और वी शांताराम जैसे उस दौर के दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया था।

0: तेरा मोह।
1: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
2: अटक अटक झट पट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बाह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली पनी हरी बोली।

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

0: तड़पता।
1: हृदय गति रुक जाने से मुंबई में अभिनेता महिपाल का निधन हो गया। उनकी फिल्में भारतीय सिनेमा की अनमोल धरोहर है।

0: जाओ कहीं भी सनम, तुझे इतनी पसंद, हमें याद रखना
1: तेरी दुनिया।
2: आज की फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

प्यार झरना है और इस निर्झर में बह जाता है हमारा मन। नहीं रोक पाते हम प्रेम के निर्झर को, वो बहता जाता है जहां तक धरती है वहां तक है प्यार का आलम।

कतरा कतरा भीगता है मन, बूंद बूंद बरसती हैं यादें, हर्फ हर्फ झरते हैं ख्वाबों के नूर, मीलों भटकता है मन बेसबब, खोई खोई आंखें, बहका बहका ख्याल, और सदी तक मोहब्बत पर कायम रहने वाले लोग।

तेज रफ्तार जिंदगी पर एक रोज विराम लग गया। घिराई घटाएं, काले मेघ डर का साया बन गए। हरे नरम दूब सूखे पत्तों में तब्दील हो गए। किताब का एक ही पन्ना अलग अलग लाइनों में बदल गया। नाजुक नर्म अल्फाज ने आंखों में सैलाब भर दिया।

आज मन के नोटबुक में लिखे हैं कुछ गुलाबी शब्द, कुछ सुर, सब तक आरो आरो और गुनगुनाया है प्रेम गीत। लिखा है खामोश अफसाना, पर शोर के इस दौर में कौन सुनता है खामोशी की सदा।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। न रहा अब अपने पास वो दिल का खजाना जिससे रोशन होते थे अपने ख्वाब, जब पूरी कायनात अपनी सी लगती थी, जब हर सुबह हरे रंग के कोपल खिलते थे, खिले हुए गुलाब को देखकर मुस्कुराकर बतकही छिड़ती थी। सब कुछ तो है पर नहीं है बहुत कुछ जिसकी है चाहत।

मोहब्बत एक कहानी है, एक राग है मोहब्बत, एक छंद है, एक कविता है मोहब्बत। मोहब्बत इबादत है, जो लिखता है मोहब्बत अपनी जिंदगी में वो नफरत के चिंगारी से दूर हो जाता है। जो किसी से सच्ची मोहब्बत करता है वो सिर्फ खुशियों के रंग में डूब जाता है। जिसे मिलती है किसी की बेपनाह मोहब्बत वो खुशकिस्मत इंसान बन जाता है।

0: तो दिल पे चले कटारी
1: है मीठी छुरी।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात्रि के 11:10.05 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।